0: अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं

0: में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान

0: अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपल

0: कोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये सब

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 8:41 और 13 सेकंड और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर मस्त मुंबई. सो आपका जिंदा दिल आरजे, आपका अपना रेडियो जॉकी रविन चौहान आपके साथ. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बाबू सोना तो क्या चाहता है. जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे की ब्राइट मॉर्निंग और आज है 14 अगस्त 2026. तो कार्यक्रम मस्त मुंबई की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि कुछ ना कुछ खास मैं ऐसा लेकर आता हूँ कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए जवाब देना पड़ता है. तो चलिए आप बताइए आज किस हस्ती के बारे में हम मैटनी शो में बात करेंगे, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बारे में. आज उनकी ज़िंदगी का खास दिन है तो व्हाट्सएप उठा लीजिए और गाने सुनकर गेस कीजिए कि आज किस हस्ती के बारे में बात करने वाला हूँ. एनीवे आपसा हमने कोई नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 8:58 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आज किस हस्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने एकदम सही जवाब दिया और उनके नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मनीष कांदीवली से, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, भालचंद्र फाटक जी और दीपा पालकर जी माहिम से, आर एन सोनी जयपुर से, और तनुजा शर्मा जी अंधेरी से, लाली झा अजमेर से,

0: प्रणव शिंदे मानखुर्द से, फिरोज सिंगनपुरिया जी ग्रांट रोड से, और दोस्तों चेतन कुमार बिहार से, और विजेंद्र घाटोल अकोला से, इन हमारे इन सभी लिसनर्स ने एकदम सही जवाब दिया। आज हम, जी हाँ, डांसिंग मैन जिन्हें बहुत ही मोहब्बत के साथ, शिद्दत के साथ और उनके हुनर की वजह से भारतीय सिनेमा का पहला डांसिंग स्टार कहा गया, उन्हें एक स्टाइलिश बॉय भी कहा गया, आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं की फिल्मों के गाने सुनवाएंगे, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, आज के दिन उनका निधन हो गया था। तो सुनते रहिए FM रेनबो, और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद अगला गीत होगा दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। हैव ए वंडरफुल डे।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
4: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: जी हाँ दोस्तों, कश्मीर की कली बहुत ही खूबसूरत गीत और लता जी की शानदार आवाज़ थी। 9:12 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। जी हाँ, और मुंबई की मस्ती के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, और जब शम्मी कपूर साहब की बात करें तो मस्ती यानी मस्ती का जो मैजिक है, जो मस्ती का जादू है, वो तो सर चढ़कर बोलता है। उनकी अदा, उनके जलवे, उनके गाने, उनका स्टाइल, सब कुछ, जी हाँ दोस्तों, सब कुछ बेमिसाल रहा। और आज की नई पीढ़ी भी उनसे रिलेट करती है, उनके पुराने गाने सुनती है तो उनके अंदाज में थिरकने की, कह सकते हैं कि नाचने की कोशिश करती है। एनीवे, आज ही का दिन था यानी 14 अगस्त और साल था 2011 और मुंबई में शमशेर राज कपूर, जी हाँ उनका पूरा नाम था शमशेर राज कपूर, और शमशेर से शमी बना लिया गया था, यानी शमी कपूर साहब का निधन हो गया था और उन्हें फर्स्ट रॉक स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म थी जीवन ज्योति जो 1953 में आई थी लेकिन नहीं चली। 1957 में फिल्म आई तुमसा नहीं देखा, और इस फिल्म से वो एक स्टाइलिश, जी हाँ बहुत ही स्टाइल वाला, जैसे एक लड़का होता है वो एक स्टाइलिश हीरो बनकर सामने आए और उनकी इमेज लड़कियों को बहुत पसंद आई। और 1959 में फिल्म आई दिल देके देखो, जिसका गीत मैंने अभी आपको सुनवाया, और फिर 1961 में जंगली, जी हाँ। और जंगली फिल्म से कह सकते हैं कि उनका जो स्टारडम था, जो उनका मैजिक था, वो इस तरह से लोगों के दिलों में छा गया कि लोगों के अंदर भी कहीं एक, कहते हैं ना कि लोग उनके लिए क्रेज़ी हो गए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए एकदम जंगली से हो गए। ऐसा था उनका, उस फिल्म का जादू, उसका मैजिक। और दोस्तों इसके बाद आई प्रोफेसर राजकुमार, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस। क्या लिस्ट है दोस्तों उनकी फिल्मों की, कमाल की फिल्में, कमाल का म्यूज़िक, रफ़ी साहब और शमी कपूर साहब की जो जोड़ी बनी, बस लोगों के दिलों को उन्होंने चुरा लिया। ब्रह्मचारी, ये सभी फिल्में सुपरहिट रही और ब्रह्मचारी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म जंगली से।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जी हाँ दोस्तों, 9:26 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट, जी हाँ, ग्रेट शमी कपूर साहब के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में। 1971 में अंदाज आई, ये एक हीरो के तौर पर उनकी आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद वो करेक्टर रोल्स करने लगे। इस पारी में उन्होंने परवरिश, प्रेम रोग, विधाता, बेताब, हीरो, सोनी महिवाल, ऐसी कमाल की फिल्मों में शानदार करेक्टर रोल्स किए। फिल्म विधाता में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1974 में छोटे सरकार आई, ये फिल्म एक नायक के तौर पर, हीरो के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म थी और ये फिल्म दोस्तों नहीं चली। जहां तक कह सकते हैं कि उनके बैकग्राउंड के बारे में, तो पृथ्वीराज कपूर साहब उनके पिता थे और राज कपूर उनके बड़े भाई थे और शशि कपूर उनके छोटे भाई थे। उनका जन्म मुंबई में हुआ था लेकिन उनका बचपन बीता कोलकाता में। अपने पिता की थिएटर कंपनी यानी पृथ्वी थिएटर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और एक, जी हाँ, एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि शुरू में उन्हें बहुत थोड़े से पैसे मिला करते थे जब वो अपने पापा की कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्हें पैसा उसी हिसाब से मिलता था जैसे दूसरे छोटे मोटे कलाकारों को मिलता था। ऐसी थी उनकी ज़िंदगी की कहानी और वो भारतीय सिनेमा के पहले, जी हाँ, पहले डांसिंग स्टार माने गए। वो करिश्मा उन्होंने किया जो कोई कर नहीं पाया था तब तक। ऐसा कहा जाता है कि शमी कपूर साहब को डांस डायरेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी। उनका डांसिंग स्टाइल ऐसा था कि वो कुछ भी कर देते थे, हाथ पैर हिलाते हिलाते, गर्दन हिलाते हिलाते, कहीं भी किसी भी तरफ निकल जाते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कैमरामैन होता था उसे प्रॉब्लम होती थी कि शमी कपूर साहब डांस करते करते किधर जाएंगे, क्या करेंगे, और कैमरामैन को उनके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए कहा जाता था क्योंकि उनका स्टाइल ही कुछ ऐसा था, उनकी अदाएं कुछ ऐसी थी, उनके जलवे कुछ ऐसे थे। तो चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद अगला खूबसूरत गीत।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से, विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार,

और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: कसम।
1: जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम कि हम कैसे बताएं कि हम भी आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं जैसे आप हमसे करते हैं। एनीवे, 9:40 और 41 सेकेंड और हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट सुपरस्टार डांसिंग स्टार शमी कपूर साहब की फिल्मों के बारे में। और हमारे दो लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिए थे लेकिन मैं उनके नाम मिस कर गया था। पुणे से राकेश माथुर जी और अमरावती से, जी हाँ अमरावती से पंकज माहौड़ जी, इन्होंने भी सही आंसर दिया था कि आज हम शमी कपूर साहब के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शमी कपूर साहब के साथ जो हीरोइंस यानी जो नायिकाएं काम करती थी जैसे आशा पारेख, शर्मिला जी, साधना जी, सायरा बानो, ये सभी बहुत ही कमाल की डांसर्स थी और सभी की जोड़ी उनके साथ बहुत अच्छी रही। लेकिन जब भी शूटिंग होती थी एक इन खूबसूरत नायिकाओं को एक समस्या रहती थी कि शमी कपूर साहब रिहर्सल के समय जो डांसिंग स्टेप्स करते थे और जब फाइनल टेक होता था तो पता नहीं होता था कि फाइनल टेक में वो क्या करते हैं। वो अक्सर स्टेप्स बदल देते थे और इससे हीरोइंस, ये बेचारी हीरोइंस थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि शमी कपूर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, करना ये था। तो इन्हें भी उनके साथ, उनके कैलिबर के साथ, उनके स्टाइल के साथ मैच करना पड़ता था और कभी कभी इन्हें थोड़ी सी समस्या होती थी, परेशान हो जाती थी, क्योंकि शमी कपूर ठहरे एक डांसिंग स्टार, एक डांसिंग मैग्नेट कह सकते हैं कि डांस उनकी रग-रग में भरा हुआ था और इसीलिए उन्हें एल्विस प्रिस्ले ऑफ इंडिया भी कहा गया। एक बहुत बड़ा नाम इनका है और उनके डांसिंग नंबर्स कितने हिट हुए हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब उनके गाने स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्ड किया करते थे तो उस वक्त शमी कपूर साहब हमेशा वहाँ पर मौजूद रहते थे और वो बहुत गौर से रफ़ी साहब का चेहरा देखते रहते थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करते थे और वो कहते थे कि जिस तरह से आप फील करके इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे हो रफ़ी साहब, जब मैं शूटिंग करूँगा तो आपके इस अंदाज़ को, आपकी इस फीलिंग को, इस मूड को मैं डांस करते समय एक्ट करने की, पर्दे पर उतारने की कोशिश करूँगा ताकि जो मस्ती आपने इसमें डाली है वो मस्ती पर्दे पर नज़र आनी चाहिए। और अक्सर इस चीज़ में वो पूरी तरह से कामयाब रहते थे और इसीलिए शायद लोग उनके डांस से इतना कनेक्ट कर पाए, इतना महसूस कर पाए। तो सुनते रहिए FM रेनबो।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

में बात कर रहे थे शम्मी कपूर साहब के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि थी तो आज हम उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं। हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे, उनका हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता और शरारती चेहरा हमेशा हमारे दिल में बसा रहेगा। शमी साहब, वी लव यू, हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, गौर से सुनिएगा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 10:47 हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं FM रेनबो. ये समय है न्यूज हेडलाइंस का. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनल्स पर प्रसारित किया जाएगा. महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर कल दोपहर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला करने का प्रयास किया. हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री बादल की हालत स्थिर है. वे खतरे से बाहर हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दिए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई की कनेक्टिविटी को बेहतर करने वाली कई योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया. इनमें सेंटाक्रूज चेंबूर लिंक रोड का BKC वाकोला आर्म, मेट्रो लाइन 2B का चेंबूर मेट्रो स्टेशन और अन्य योजनाएं शामिल हैं. अंत में मौसम. मुंबई में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई, उपनगरों और आसपास के जिलों में अगले 3-4 घंटे तक मध्यम बारिश होने की संभावना है. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस. तो सुनते रहिए FM रेनबो.

0: जी हाँ, मुंबई सिटी, वेलकम बैक। 10:02:40 हो चुके हैं। तो गीत संगीत की इस महफिल नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। इस शो में मुंबई आपके साथ में आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। सो
1: जाते हुए देखा है वो देखो।

हे मुंबई सिटी, राम और श्याम, सीता और गीता, किशन कन्हैया, चालबाज, दोस्तों ये ऐसी फिल्में थी जिनमें एक एक्टर ने डबल रोल किए, यानी जुड़वा भाइयों या जुड़वा बहनों की कहानी थी। और आज हम ट्विंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली जानकारी देने से पहले, हमारे दो ऐसे बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से लिसनर्स हैं जिनका नाम है स्नेहा सिसोदिया और हर्षिता सिसोदिया। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, ट्विंस हैं, और बहुत सालों से ये रेनबो के लिसनर्स रहे हैं और लगातार यानी हमेशा रेनबो सुनते रहते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए अपना फीडबैक भी देते रहते हैं और रिक्वेस्ट आवर में रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो हमारे पास भी दो जुड़वा जो ये बहनें हैं हमारी रेगुलर लिसनर्स हैं, और आज मैं ट्विंस पर शो करने वाला हूं, तो मुझे अचानक इन दोनों का नाम याद आ गया और इनका चेहरा याद आ गया, क्योंकि व्हाट्सएप की जो डीपी है उस पर इनका इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटो है दोनों बहनों की। और आज हम ट्विंस के बारे में बात करेंगे। तो स्नेहा जी, हर्षिता जी, अगर आपके पास समय है तो हमारे इस स्लॉट को ज़रूर सुनिएगा। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय

0: भारत वंदे मातरम।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जी हाँ, मुंबई सिटी 10:28 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम जुड़वा भाइयों और बहनों के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारे एक बहुत ही जो रेगुलर लिसनर हैं सिसोदिया सिस्टर्स, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा चेहरा, एक जैसा अंदाज, एक जैसा हेयर स्टाइल। और ऐसा माना जाता है कि जब भी दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ये सारी खूबियाँ आ ही जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव की सैर करवाएंगे जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होना एक रिवाज है, एक आम बात है। जी हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, हैरानी की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के एक स्टेट में एक ऐसा गांव है जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होते रहते हैं, और वहाँ पर ये एक आम बात है, साधारण सी बात है, उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है। और इस गांव का नाम है, केरला के राज्य मलप्पुरम में ये गांव है, जिसका नाम है कोदिनही। जी हाँ, कोदिनही। अगर आप कभी केरला जाएं तो इस गांव में ज़रूर जाएं। आप पाएंगे कि वहाँ पर बहुत सारे जुड़वा बच्चे एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ साइकिल चला रहे हैं, और इतने सारे जुड़वा बच्चों को एक साथ देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये इस गांव की एक खूबी है। यहाँ लगभग 2000 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं, और लगभग 500 जुड़वा बच्चों के जोड़े हैं, यानी कह सकते हैं टोटल 1000 बच्चे हैं जो जुड़वा हैं। इसे कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगना। सो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर मिलते हैं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से, विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन

और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

जी हाँ, गीत संगीत के दीवानों एफएम के चाहने वालों, 10:38 और 16 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होना एक आम बात है, एक कस्टम है जैसा हो गया उनके लिए कि जुड़वा बच्चे पैदा ही होते रहते हैं, कोई उन्हें हैरानी नहीं होती। और ये गाँव जैसा कि मैंने बताया कि केरला में है, जिसका नाम है कोदनी। तो यहाँ पर जो लगातार जुड़वा बच्चे पैदा होने की गिनती बढ़ रही है, इसमें एक खास बात और है दोस्तों कि इस गांव की लड़कियों की शादी अगर यहाँ से दूर कहीं और भी होती है तो भी उनमें से ज़्यादातर लड़कियों ने जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस गाँव के पानी में कुछ ऐसी खास बात है, कोई ऐसा खास रसायन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक पूरी तरह से इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा पाए। और एशिया में कोदनी गांव जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में पहले स्थान पर आता है, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि एशिया में ये गांव नंबर वन है जहां पर जुड़वा बच्चे इतने ज़्यादा पैदा होते हैं, और इसलिए इस गांव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होती रहती है। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: रेस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे कार्यक्रम नमस्ते भारत और बात कर रहे हैं जुड़वा बच्चों की और एक ऐसे गांव की जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होना आम बात है और ये इस वजह से एशिया में एक नंबर वन गांव भी माना जाता है। एनीवे, कैसे कैसे रिकॉर्ड बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो कुछ और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी केरला जाएंगे और इस गाँव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस गाँव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा है, भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है, कोंदनी गांव। इंग्लिश में इस गांव को नाम दिया गया है ट्विंस टाउन। यहां पर ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होने के पीछे क्या राज है दोस्तों, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, यानी लंदन से, जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से बहुत सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक 2016 में यहां पर आए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों और जुड़वा बच्चों के ब्लड सैंपल्स, उनके बाल, उनका स्लाविया, उनके स्किन के सैंपल्स वगैरह सब इकट्ठे किए और लैब में जाकर उस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उन्हें कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। जी हाँ, कहते हैं ना, कहीं कहीं भगवान के सामने विज्ञान भी हार जाता है, भगवान की शक्ति इतनी है। यानी उन्हें कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसकी वजह से वो साबित कर सकें कि इस बात से यहाँ पर जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। बस उन्होंने मोटा मोटा इतना कह दिया कि यहाँ के हवा में या यहाँ के पानी में या यहाँ के भोजन में, फूड में कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा रसायन है जिसकी वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एनीवे, जब उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी रिसर्च की थी, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें बोलना भी चाहिए था। खैर, भगवान की ताकत के सामने कह सकते हैं कि इंसान की ताकत या विज्ञान की ताकत बहुत कम है। ऊपर वाले ने जो बनाया है वो बेमिसाल है, खूबसूरत है। तो चलिए, एक बेमिसाल गीत आपके लिए, आपकी तारीफ में, गौर से सुनिएगा।

0: कहां।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे गांव की बात कर रहे थे जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होना एक आम बात है। और हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर प्रणव शिंदे जी ने मानखुर्द से मैसेज भेजा है कि उनके दो कज़न ब्रदर हैं और वो भी जुड़वा हैं, और उन्होंने उनकी तस्वीर भी शेयर की है, और उनकी मौसी की दो बेटियाँ हैं वो भी जुड़वा हैं, और इसे कहते हैं कि एक परिवार में डबल धमाका। एनीवे, इन सारे धमाकों के साथ मैं रविन चौहान आपसे विदा लेता हूं। हमारी साथी आरजे रोशनी स्टूडियो में आ गई हैं और स्टूडियो में जो लाइट का लेवल है वो अचानक उनकी रोशनी की वजह से बढ़ गया है। तो चलिए, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, टेक केयर।
2: नजर में बिजली।

आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं और नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश के वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्धि हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए नदी जोड़ो परियोजनाएं लागू की जाएंगी। कल मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एकीकृत जल योजना के तहत गोदावरी, कृष्णा, तापी और नर्मदा बेसिन तथा कोंकण की पश्चिम वाहिनी नदियों को शामिल किया गया है। वह समाचारों के अंत में, पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना राय बाकिनी को सीधे सेंटो में हराया। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो सेवा पर। हेलो, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। शुरू हो गया है कार्यक्रम ब्रेक फ्री। वैसे शुक्रवार है और शुक्रवार के चलते ही ना सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि ऐसा कभी हो सकता है कि शुक्रवार है, और वैसे तो हम हमेशा शुक्रवार के बारे में कहते हैं कि शुक्र है, शुक्रवार है। ऐसे कहने के बावजूद किसी का मूड जो है आज ही के दिन खराब हो जाए। वैसे फ्राइडे तो काफ़ी फन होता है और मानो आप उन्हीं में से एक हो कि शुक्रवार है, लंबा वीकेंड आने वाला है, फिर भी मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आज ब्रेक फ्री में रोशनी आपके लिए ऐसी गाने लेकर आई है जिसमें काफ़ी जश्न मौजूद है, नाच गाना होने वाला है, तो पार्टी मूड जो है यहाँ पर होने वाला है। तो आप भी खुश होने को तैयार हो जाओ, रोशनी के साथ शामिल हो जाओ ओनली ऑन 107.1।

असल जिंदगी में वाकई किया हो या ना हो, लेकिन हम सभी ने दोस्तों के साथ मिलकर बिन बुलाए बाराती बनने की प्लानिंग तो की है। अब आसपास के कई सारे लोगों से उनके किस्से सुने हैं जो काफ़ी ही मज़ेदार लगे हैं, और फिल्मों में भी ये सीन देखते हैं तो हम काफ़ी प्रेरित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी तक अगर हमने किया नहीं है तो ज़रूर एक बार तो ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। देखो, आपकी और मेरी तरह आम लोग तो ये सब कुछ करते हैं या करने की सोचते हैं, लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो हम देखते हैं कि वो फिल्मों में ये सीन कर रहे हैं, क्या वाकई ये भी अपनी तरह जो है किसी शादी में या पार्टी में कभी गेट क्रैश इन्होंने किया होगा या नहीं?

के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक। देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी। इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे पूछ।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

अब शाहरुख खान की कोई भी पार्टी हो उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन ये मौका मिला कपिल शर्मा को। तो ये जो कॉमेडियन एक्टर जो है, उनके लंदन से कज़न आए थे और उन्होंने इच्छा जताई कि वो शाहरुख खान का घर देखना चाहते हैं। कपिल शर्मा ने अपनी गाड़ी निकाली और बंगला दिखाने चले गए। इत्तफाकन उसी दिन पार्टी चल रही थी, इसलिए जो घर के दरवाजे थे, गेट्स थे, वो खुले थे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि गाड़ी में कपिल शर्मा है तो उन्हें आसानी से जो है अंदर जाने की इजाज़त दे दी। अब इरादा कुछ अलग था लेकिन यहाँ पहुंचकर कुछ अलग ही हुआ और आगे अंदर जाते ही सामने ही शाहरुख खान दिख गए। अब अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा गिल था कि मिलके ही सबसे पहले उन्होंने शाहरुख खान को जो भी असली बात है वो सच सच बता दी और किंग खान ने भी जो है अपने खास अंदाज में थोड़ा ह्यूमर और थोड़ा बात संभालते हुए जो है पूरी बात को संभाल लिया। और ये जो बिन बुलाए बाराती या फिर बिन बुलाए मेहमान जो है, यानी कपिल शर्मा और उनके कज़िन जो है, पार्टी में चले तो गए ऐसे ही, लेकिन आखिर तक उस पार्टी में वो रुके हुए थे। यानी अब कपिल शर्मा जो है उन्होंने तय तो नहीं किया था, लेकिन अनजाने में ही गेट क्रैश कर दी, वो भी शाहरुख खान की पार्टी। और ये जो पूरी बात है जितनी फिल्मी है उतनी ही पॉजिटिव भी है, क्योंकि देखो जो लग रहा था या फिर अनजाने में किया था, लेकिन पहले बार मिलते ही शाहरुख खान को सब कुछ सच सच बता दिया। बोले

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना,

0: मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
4: ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत ब्रेक फ्री कार्यक्रम में। रोशनी आपके साथ है जहां पर आज हम बातें कर रहे हैं उन सेलिब्रिटी पार्टियों की जहां पर और सेलिब्रिटीज जो है अचानक से जा पहुंचे या फिर कई बार आम आदमी भी उनकी शादियों में पार्टीज में चले जाते हैं। कैसे मौका मिलता है पता नहीं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो, आपने भी कभी कोशिश की है और किसी सितारे की शादी या पार्टी में आप शामिल हुए हो इसी तरह बिन बुलाए, तो आप फ़ोन कॉल करके मैसेज करके अपना जो असल ज़िंदगी का एक किस्सा है मेरे साथ शेयर करो और फिर जितने भी सारे हमारे एफएम रेनबो के लिसनर्स फ़िलहाल सुन रहे हैं उन तक आपकी जो बात है ज़रूर पहुंचाई जाएगी। ब्रेक फ्री में ऐसे और भी हम किस्से जानेंगे जहां पर कई बार सेलिब्रिटीज़ ने खुद गेट क्रैश किया है या फिर इनकी शादियों में कोई अचानक से पहुँच गया है। ये सारे किस्से गानों के उस पार, तब तक आपके दिल की बात आप मुझ तक जरूर पहुंचाना।

1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में इतने लोग आए थे कि दूल्हा दुल्हन दोनों भी लगभग बेहोश हो गए। सभी इतना सजधज के आए थे, सभी के हाथों में बड़े बड़े बक्से थे, सभी ने मिलकर शुभकामनाएं दी। मगर कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद पता चला कि उन बड़े बड़े बक्सों में अच्छा गिफ्ट रैप करके तो लेकर आए थे, लेकिन अंदर पत्थर और सैंडल भी लोग देकर चले गए थे। तो जब इतनी बड़ी शादियां होती है और पार्टियां होती है,

कई बार कब कौन आकर चला जाए ये समझ नहीं आता। आम लोगों के घर में भी कई बार ऐसे होता है। और सलमान खान की घर की पार्टियों के ऐसे किस्से तो कितने हमने सारे सुने हैं कि घर पर अचानक से कोई चोर भी चला आया है, ऐसा कोई आया है जो किसी का भी दोस्त नहीं है और हर कोई सोच रहा है कि घर में और किसी का वो दोस्त होगा। तो ऐसे होते हैं किससे, ऐसी जुड़ी और भी कहानियां मेरे पास है, लेकिन क्या करते हैं ना, सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाना सुनते हैं फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी।

0: रिस्पांस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस।

0: रुपए और वीसा डेबिट कार्ड
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

रिसेप्शन था, तभी भी कुछ ऐसे ही हुआ कि रिसेप्शन में कई सारे लोग जो थे फ्री का खाना खाने पहुंच गए, और उसी वक्त जो है सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पता चल गया कि कुछ लोग ऐसे ही आ गए हैं बिना बुलाए और खाना जो है काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना था, मैं भी अपनी शादी जो है इतना दिल से एंजॉय कर रही थी, तो ना उन लोगों ने हमें तकलीफ़ दी, ना हमें हमने जो है उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई, और इस तरह जो है शादी भी हो गए उस दौरान का, और ये खास जो किस्सा है वो भी याद है। तो ऐसे कई बार होता है कि शादियों में, पार्टियों में, खास तौर पर जब बड़े लोगों की शादियां होती है, पार्टियां होती है, तो वो अलग तैयारियों में होते हैं, और आम लोग जो है कि किस तरह उनकी शादियों में, उनकी पार्टियों में शामिल हो जाए, उसके लिए अलग अलग तरकीब जो है निकालते रहते हैं।

आप में से कई सारे लोगों ने आपकी जो बात है, आपकी जिंदगी के कुछ किस्से हैं मुझ तक पहुंचाए हैं, लेकिन अभी ऐसा करते हैं केदारनाथ फिल्म के गाने के साथ ब्रेक फ्री कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करते हैं। रोशनी आपको मिलेगी ठीक 12 बजे समाचारों के साथ।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours।
1: नमस्कार, ये है आकाशवाणी मुंबई का FM Rainbow चैनल और वक्त हुआ है इस घंटे के समाचारों का। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस

को याद करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि हादसे के समय सुरंग में कुल 22 कर्मचारी मौजूद थे। और समाचारों के अंत में, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पंजाब, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट, विभाग पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ समाचारों का यंग समाप्त होता है और अभी इसी के साथ शुरू होता है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। एफएम रेनबो पर म्यूजिक कैफे कार्यक्रम शुरू तो हो गया है, लेकिन ब्रेक फ्री की कुछ बातें जो है उन्हें अब साथ मिलकर पूरा कर ही देते हैं। जब हमने बात कर रहे थे कि सेलिब्रिटी वेडिंग्स और पार्टियों की और कैसे लोग अचानक पहुंच जाते हैं, और आपकी और मेरी तरह कई बार सेलिब्रिटीज़ जो है वो भी किसी और के पार्टियों में, शादियों में गेट क्रैश करने की कोशिश उन्होंने भी की है। जब इतने सारे किस्से चल रहे थे, तभी शुभलक्ष्मी मस्तकर है, संजय दर्शन, दीपा पालकर, इन्होंने कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में कहा कि वहाँ पर उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को पाया तो था, लेकिन उन्हें काफ़ी सम्मानपूर्वक आदर के साथ जो है बुलाया गया था, आमंत्रित किया था, और ऐसी जगहों पर जो है उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को पाया। और प्रकाश शिंदे जो है उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार शादी से जुड़ा किस्सा बताया है कि 2 साल पहले की बात है, वो अपने दोस्त के साथ ऐसे ही एक शादी में अचानक से बिन बुलाए पहुँच गए, और पहुँचने पर उन्हें पता चला ये उनके एक दूर के रिश्तेदार की शादी है, और ये भी बिंदास जाकर उनसे उन्होंने बात की और पूछा भी कि हमें न्योता क्यों नहीं दिया गया। तब उन रिश्तेदारों ने बताया कि वो तो वाकई घर पर पहुंच गए थे, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इस वजह से जो है इनविटेशन कार्ड पहुंचा नहीं। लेकिन अब पार्टी में गए थे, शादी में चले गए थे, बस सभी जान पहचान के लोग भी थे, तो खाना खाया, खूब एंजॉय किया, और इस बिन बुलाए शादी में अपनों की तरह पूरी तरह व्यवहार करके जो प्रकाश शिंदे हैं वापस लौट आए हैं। क्या बात है, बहुत ही खूब सा आपका जो है एक असल जिंदगी का एक किस्सा रहा है, हमारे साथ शेयर किया है। तो फ्राइडे हमारा वाकई फन हो गया है। गाना गाने के बाद कुछ और बातों के लिए यहीं पर बने रहो और सुनते रहो रोशनी के साथ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

सुने अनसुने हादसे जो है इंसानों के हमने तो जान दिए, लेकिन कई बार ऐसे ही कुछ बहुत अलग सुने अनसुनी बातें जो होती हैं जानवरों से भी जुड़ी होती है। जैसे कबूतरों के बारे में तो हमने कई बार सुना है कि वो संदेश पहुंचाते हैं, लेकिन कबूतरों ने बहुत ही ज़रूरी संदेश पहुंचाकर जंग के दौरान कई सारी लोगों की जान भी बचाई है। एक बिल्ली ने खूनी को पकड़वाया है, तो कुत्तों से जुड़े तो कितने सारी बातें होती है, कैसे एक कुत्ते ने आग लगी थी तो एक बच्चे को जो है बचाया था, या फिर घर के ही बच्चे को बड़े भाई की तरह उसने पाला। फिर ऐसे भी कुछ हमने जानवरों के बारे में जाना है, या फिर पालतू कुत्ता होता है जिसने रिश्ते बनाए और रिश्ते जोड़े हैं।

0: श्रोतेहो, आकाशवाणी मुंबई आणि पु ल देशपांडे अकादमी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 12 ऑगस्ट 2026 रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर येथे संपन्न झालेल्या भारतीय नौदल पश्चिम कमान बँड पथकानं सादर केलेला नौसेना स्वरवंदना या आमंत्रित श्रोत्यांच्या समक्ष पार पडलेल्या कार्यक्रमाचा संपादित भाग आपण ऐकू शकाल दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11:05 आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवर, तसेच संध्याकाळी 5:03 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो वाहिनीवर।
1: ये है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। रोशनी के साथ म्यूजिक कैफे चल रहा है और म्यूजिक के बीच अब थोड़ा सा वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गाने और हमारी जो थोड़ी सी बातें करने का वक्त है उसे पूरा करने के लिए यहीं पर मिलेंगे, ओनली ऑन 107.1 MHz।
2: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
2: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
5: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक सुपरहिट हिंदी फिल्म में जितना मसाला जरूरी होता है, ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन, स्पोर्ट्स, क्राइम, ये सारी बातें जो है ये वाकई हुई है 1966 में, उस साल ही जब फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, तब ठीक वर्ल्ड कप के पहले जो है ट्रॉफी गायब हो गई। अब सोचो, इतने बड़े पैमाने पर वर्ल्ड कप हो रहा है और उसकी ट्रॉफी ही गायब, तो फिर क्या, पुलिस की खूब छानबीन हुई, मीडिया कवरेज भी खूब हुआ, इस हद तक कि कुछ वक्त के बाद वो ठंडा भी पड़ गया। और उसके बाद एक बार ऐसे हुआ, एक आदमी सुबह सुबह अपने कुत्ते को वॉक पर ले जा रहा था और अचानक से उस पालतू कुत्ते को एक छोटे से पौधे के पास अखबार में लिपटा कुछ दिखा। उसने फिर पास जाकर देखा, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर ही वाकई उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। फिर क्या, उस कुत्ते को नेशनल कैनाइन डिफेंस लीग ने सिल्वर मेडल से उसे सम्मानित भी किया, एक स्पाई फिल्म में काम करने का मौका भी मिला और अब तक की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे मशहूर जानवरों में से एक है। अब क्यों नहीं होगा, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिसने दिलाई है उसे लोग कैसे भूल सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं और प्यार खूब तभी भी लोगों ने बरसाया है और अब ये जब हमें पता चला है, वाकई लगता है बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल ये बात है।
1: ए कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगी मैं।

कोई मिलने मिलाने स्वागत करने पहुंच गया है, लेकिन आज का जो म्यूज़िक कैफ़े कार्यक्रम जो है यहीं पर पूरा होता है। अब कुछ ही पलों में यानी दोपहर के ठीक 12:30 पर हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तो बने रहो 107.1 पर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
0: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
0: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदेव दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है, कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ

0: अवनी से शुरू हुआ था जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
1: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
0: जी।
1: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
0: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गुण, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
0: जी।
1: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
0: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
1: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
0: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
1: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था
0: जी।
1: आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
0: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। audio@cit.nic.in है हमारी ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
0: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और

0: दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की माँ ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
1: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
2: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
1: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
2: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
1: जैसे तुम्हारे मर्जी।
0: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी, मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई?
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
4: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
3: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
5: अरे जाओ, कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी। वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
0: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
6: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1 लाख सैनिक रखकर नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
6: मेरे साथियों

0: हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
1: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
0: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
2: लेकिन वो कैसे?
0: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
2: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
3: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
2: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
0: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
4: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी हूं। क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूं? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ।
6: हाँ।
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना।
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहां से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
5: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
6: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
5: ठीक है,
6: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
5: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में न जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
6: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
5: क्या?
6: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, न इधर उधर भटकेंगे न शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
5: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
6: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
5: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
3: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। तीन दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
4: इस घटना से वल्लभ भाई के दो प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
3: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।

0: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
1: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
0: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
1: हाँ, काफी स्वयं सेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
0: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
1: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
2: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
1: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
2: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
1: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
2: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं।
1: जी,
2: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
1: उससे क्या होगा
2: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं, ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
3: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
4: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
5: मैं आप लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
6: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
5: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
6: नहीं।
5: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
6: नहीं।
5: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
6: ठीक है, हम सत्यवान हैं।
4: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
7: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
4: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
8: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी हमने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और अब ठीक 1 बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के छत्रपति संभाजी नगर से मराठी समाचार।
11: नमस्कार। आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर केंद्राच्या दुपारच्या बातमीपत्रात मी अपर्णा अध्यापक आपलं स्वागत करते। देशाचा 80वा स्वातंत्र्य दिन उद्या साजरा होत आहे। स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला आज संध्याकाळी 7 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राला संबोधित करणार आहेत। राष्ट्रपतींचं हे संबोधन आकाशवाणीवरच्या सर्व केंद्रांवरून तसंच दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांवरून प्रसारित केलं जाईल। स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राजधानी दिल्लीतल्या लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या सकाळी 7 वाजता ध्वजारोहण होणार आहे। त्यानंतर पंतप्रधान राष्ट्राला संबोधित करतील। राज्यात जिल्हा मुख्यालयांवर संबंधित पालकमंत्री आणि मंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येणार असून सामान्य प्रशासन विभागानं याबाबत परिपत्रक जारी केलं आहे। मुंबईतील मंत्रालयात सकाळी 9:05 राज्याचा मुख्य शासकीय स्वातंत्र्य दिन समारंभ होणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येईल। पुण्यात राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे। राज्यातल्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सकाळी 9:05 एकाच वेळी ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे। विभाजन विभीषिका स्मृती दिन देशभरात आज पाळला जात आहे। 1947 भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, मात्र त्यासाठी देशाची फाळणी होऊन मोठी किंमत मोजावी लागली। या फाळणीमुळे कोट्यवधी बंधू भगिनी विस्थापित झाले आणि हिंसाचारात अनेकांनी प्राण गमावले। त्यांच्या या त्यागाची, संघर्षाची आणि बलिदानाची आठवण ठेवण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो। विभाजन विभीषिका स्मृती दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फाळणीच्या वेळी प्राण गमावलेल्या नागरिकांना आदरांजली वाहिली आहे। फाळणीच्या भीषण शोकांतिकेत असंख्य कुटुंब उद्ध्वस्त झाली, प्रियजन दुरावले आणि अनंत वेदना सहन कराव्या लागल्या। मात्र या संकटावर मात करत लोकांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं अशा शब्दात पंतप्रधानांनी पीडितांच्या धैर्याचं स्मरण केलं। स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पोलीस, अग्निशमन, गृहरक्षक आणि नागरी संरक्षण तसंच सुधारात्मक सेवा दलाच्या 1,057 जणांना

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। मैं हूँ रोशनी और हिट एंड हॉट कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये रिक्वेस्ट आर है और कई बार ऐसा होता है हम मिलते हैं तो एक खास थीम या टॉपिक को लेकर बातें होती है, उसी से जुड़े गाने हम सुनते हैं। इसलिए आज भी कई सारे लोगों को जानना है कि आज के रिक्वेस्ट आर की थीम क्या है। तो देखो, कल इंडिपेंडेंस डे है तो इसी के चलते वो गाने तो नहीं सुनेंगे क्योंकि कल पूरे दिन आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर हम पेट्रियोटिक सॉन्ग्स का जो है आनंद लेंगे। लेकिन आज मैं आपको आज़ादी देना चाहती हूँ, जो दिल चाहे उस गाने की फरमाइश जो है आप मुझ तक पहुँचा सकते हो। और पूरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि 2 बजे तक का जो वक्त है उसमें आपका गाना भी शामिल हो जाए। वैसे आज जॉनी लीवर का बर्थडे है तो बर्थडे बॉय की फिल्म कुछ कुछ होता है से आज का हमारा पहला गाना।

0: श्रोते हो, आकाशवाणी मुंबई आणि पु ल देशपांडे अकादमी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 12 ऑगस्ट 2026 रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर येथे संपन्न झालेल्या भारतीय नौदल पश्चिम कमान बँड पथकानं सादर केलेला नौसेना स्वरवंदना या आमंत्रित श्रोत्यांच्या समक्ष पार पडलेल्या कार्यक्रमाचा संपादित भाग आपण ऐकू शकाल दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11:05 आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवर, तसेच संध्याकाळी 5:03 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो वाहिनीवर.
1: आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर अब हम सुनेंगे प्रकाश शिंदे की पसंद का गाना, क्योंकि उन्होंने आज ही की तारीख को दीदार फिल्म रिलीज होकर 34 साल पूरे हुए हैं. तो फिल्म एनिवर्सरी के मौके पर उसी फिल्म के गाने की फरमाइश की है, तो वो गाना तो हम ज़रूर सुनेंगे. साथ ही अरुणाचल प्रदेश से जो है एक सेना के सिपाही जो है ऑन ड्यूटी होते हुए न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी FM रेनबो और हमारा हिट एंड हॉट कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो उनके लिए उन्हीं की पसंद का गाना दिल हर दिल जो प्यार करेगा इस फिल्म से. तो बैक टू बैक दो गाने, गानों के बाद किसका गाना होगा जानना है, तो बने रहो, सुनते रहो 107.1.

कोई फिल्म एनिवर्सरी मनाना चाहता है तो कोई ऐसे भी है जो बोधे गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनका दिन और भी खास मनाना चाहते हैं। वैसे ही हमारे एक लिसनर है पंकज महोत जो बोधे गर्ल्स सुनिधि चौहान की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं। तो चलो हम सभी मिलकर सुनिधि चौहान को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं धूम 2 फिल्म से गीत।

अब दौर पूरी तरह बदलने वाला है, लेकिन सुपरहिट गानों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। सभी हमारे कई सारे लिसनर्स हैं, फिरोज सिगनपुरिया, शुभलक्ष्मी मस्तकर, दीपा पालकर, गणेश मगर मुंगी, ये सभी शमी कपूर की फिल्म जंगली से गाना सुनना चाहते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनको नमन करते हुए सुनते हैं जंगली फिल्म का टाइटल ट्रैक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम कहते हुए अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एफएम रेनबो पर हिट एंड हॉट कार्यक्रम में अब हमारे पास एक ही गाने का वक्त है, क्योंकि अगले गाने की जो फरमाइश की है वो बहुत ही बड़ा गाना है, लेकिन कल के दिवस के मौके पर ये गाना बहुत ही सही है और इस गाने की फरमाइश की है वर्नी से योगिता ने। तो थैंक यू सो मच बॉर्डर टू का ये गाना हम ज़रूर सुनेंगे। और आखिरी बात तो बस मैं यही कहूँगी कि कल 15 अगस्त हम सभी जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिवस है और इस साल 79 साल पूरा कर 80वां हम जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसलिए जश्न मनाने का मौका जो है और भी हमें बहुत खास वजह मिल गई है। हर किसी से गुजारिश है कि अपने घर के बाहर, अपने ऑफिसेस के बाहर तिरंगा जरूर लहराए और जो राष्ट्र प्रेम और एकता की जो भावना है इस माध्यम से भी जरूर जताए। तो हर कोई 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो है हर घर तिरंगा इस अभियान का हिस्सा बने। और इसी नोट पर रोशनी आज आपको अलविदा कह रही है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जल्द मिलते हैं।

0: And rain have triggered a fresh flood threat in northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. More from our correspondent.
1: The flood situation on the ground is grim in several parts of northern Odisha. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. The Baitarani is flowing above the danger mark at Anantpur and Patna in Keonzhar district, while the Jalaka at Mathani in Baleswar district is flowing at 7.84 meters against the danger level of 6.50 meters. Flood water has again entered through a breach in the Anantpur ring embankment. Joda and Balwil in Keonzhar district are also waterlogged. In Mayurbhanj, the Budha Balanga has spilled into parts of Baripada, while several roads are underwater. The Subarnarekha and Baitarani rivers are above danger levels. With more rainfall forecast, residents in low-lying and riverbank areas have been advised to remain alert. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
3: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला जामा

0: मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
5: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं, सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
6: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी

0: हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़

78,000 पर और निफ्टी 45 अंक फिसल कर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: কিতেরে গমু মাহের লাজাতে
1: হোসে
0: গমু মাহের লাজাতে হো না খোয়া।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Good evening, namaste, sashriyakaal, adab, Mumbai. Welcome to 107.1 FM Rainbow. 5:02:33 दिखा रही है घड़ी और हम लेके आए हैं फ्राई ये मतलब जो ये खुशी जो होती है कि वीकेंड शुरू हो गया है, टेक्निकली हो चुका है. हाँ जी, 9 to 5 वाले जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल पड़े हैं घर की ओर. तो फ्राइडे की इस शाम, इस खूबसूरत सी वीकेंड की शुरुआत में आ गई है आपके साथ आपकी आशना, जो बने रहेगी पूरे 8 बजे तक. बहुत सारे खूबसूरत गाने, ढेर सारी बातें, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम और खास कार्यक्रम भी आप तक पहुंचने वाले हैं. लेकिन किंतु और परंतु शुरुआत करते हैं भाई प्रोग्राम का नाम जो है उसी से, लव यू जिंदगी, डियर जिंदगी से, जसलीन रॉयल की आवाज़ में. वो कहता है ना, जिंदगी से कहिए लव यू, वो पलट कर आपसे कहेगी

107.1 FM Rainbow, Love You जिंदगी सुन रहे हैं आप. और अगर आप इस वाले गाने से और इसके हिंट से नहीं समझ पाए कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ. थके मांदे पूरा का पूरा जो मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो पूरी थकावट है वो इसी वक्त निकल रही होगी, ड्राइव करते हुए बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, ऑटो में, शायद पैदल, है ना. कोई नहीं, ज़्यादा काम कराना ही नहीं है मैंने आपको खुद ही बता देना है कि हम आज किस बारे में लव यू ज़िंदगी में बात करने वाले हैं. आज ही का दिन है, खास है, क्यों है ये तो बताना बनता है ना. तो वो जो है, यानी कि आज 14 अगस्त का दिन, ये मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में फिनेंशियल अवेयरनेस डे के नाम से. अब आप सोचेंगे, ओहो, ये सी ए साहिबा तो बड़े बड़े वर्ड्स लेके आ गई, अफ इसके बारे में तो बात अभी करनी ही नहीं है. नहीं नहीं, हम ना बड़े सिंपल सिंपल तरीके से जानेंगे और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करना वो भी जानेंगे. क्योंकि द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, महमूद साहब की आवाज़ में सुनेंगे आप ये गाना ओनली ऑन एफ एम रेनबो, म्यूजिकली योर्स.

धन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। The whole thing is that के भैया सबसे

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के इंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं और साथ

साथ आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती की न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए कभी भी कहीं भी 24/7। तो अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है, बहुत गलत बात, ऐप डाउनलोड कीजिए। एफएम रेनबो मुंबई को आप अपने फेवरेट्स में डाल दीजिए तो बस एक बटन क्लिक और आपके सारे जो एफएम रेनबो के दोस्त हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। कभी भी कहीं भी, कहीं भी हो आप दुनिया के कोने में, जैसे अलग अलग जगहों से हम तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं सुरेश कुमार, पंकज, विजेंद्र, अंकित, संतोष दिनकर, दीपा, राकेश, रामदास, विश्वनाथ, मंगेश, वैदेही, साथ ही साथ और कौन है हमारे पास यहाँ पे, राहुल हैं जो अभी अभी ट्यून इन किए हुए हैं। तो आप सभी का वेलकम ऑन द शो। और हम आज बात कर रहे हैं फिनेंस अवेयरनेस की, यानी पैसों की। मैंने ये कह रहे हैं ना, द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया, मैंने नहीं कहा, ना ना मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं। बट ऐसे ही कुछ मदेजार से गाने जो हैं वो पूरे 6 बजे तक आप सुनते रहेंगे। उसके बाद आप सुनेंगे बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम अंदाज़े बयां, जहाँ गज़लें होती हैं, शेर व शायरी होती है, लेकिन उसके बीच में आप सुनेंगे 6:05 से 6:15 तक हमारा प्रादेशिक समाचार। और ठीक 7 बजे आज की शाम, यानी स्वतंत्र दिन की पूर्व संध्या पर, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र को दिया गया संदेश हिंदी और अंग्रेजी में ठीक 7 बजे आप सुन पाएंगे एफएम रेनबो पे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ ही। कुछ और ऐसे मज़ेदार गाने और कुछ बढ़िया से फैक्ट्स बिल्कुल पहुंच रहे हैं आपके पास ओनली ऑन एफएम रेनबो। म्यूजिकली और सुखविंदर सिंह लेके आ रहे हैं फ्रॉम द मूवी अपना सपना, मनी मनी मनी।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

किशोरदा की आवाज़ में आपने सुना फिल्म कर से। पैसा, ये पैसा बहुत सारा पैसा नहीं, मैं पैसे कमाने या लुटाने वाली किसी भी चीज़ के लिए जो है ना, नहीं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उसके लिए हमें खुद अपनी समझदारी से करना, और इसीलिए तो आज का दिन मनाया हुआ है। 14 अगस्त को दुनिया के बहुत सारे देशों में मनाया जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस डे। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी प्रोग्राम। तो चूंकि नाम में ही जिंदगी है, तो जिंदगी से जुड़े कुछ खास चीज़ें, कुछ खास बातें जो हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं इस पूरे एक घंटे में। 5:25 दिखा रही है घड़ी। और अगले गाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज करना जो है वो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी एक हुनर, एक टैलेंट जो है। स्कूल में, कॉलेज में हम शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो पूरा संभाल रहे होते हैं। पर जब जैसे ही नौकरी शुरू करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कैसे संभाला जाए। गाने में कह रहे थे ना, अगर है तो भी मुसीबत, नहीं है तो भी मुसीबत, दोनों तरीकों से मुसीबत। लेकिन उस मुसीबत से बचने के बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे टिप्स जो हैं वो आप तक पहुंचेंगे यहीं पे इसी शो में। लेकिन किंतु और परंतु, क्योंकि वाइब जो है फ्राइडे की हो चुकी है और इतना बढ़िया वाला गाना हमने सुन लिया कि एकदम डांस वाला मूड हो गया है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ड्राइव कर रहे हैं तो डांस नहीं करना, बाकी कहीं भी कर लीजिए। ऊषा तो पा रही हैं बढ़िया सा गाना लेके बपीदा के साथ, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर गाना सुनेंगे आप डिस्को डांस से, ओनली ऑन एफएम रेनबो। कहीं मचाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम हैं म्यूजिकली यॉर्स।

0: ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो तो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, वो स्टेशन जिसे न सिर्फ लोग सुनते हैं बल्कि उसी की सुनते हैं दिल से दिल तक।
1: दिल से दिल तक वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी और यहाँ बात हो रही है एक ऐसी चीज की जिसके बारे में बात करने में मजा तो सबको आता है लेकिन अगर उसके बारे में सोचा जाए और प्लानिंग की जाए तो बहुत थकावट और बहुत सिरदर्दी सी लगती है ना। आज है फिनेंशियल अवेयरनेस डे, तो लव यू जिंदगी में बात हो रही है कि कैसे आप जो हैं इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बजट्स बना लीजिए, बचत कैसी करनी है या पहले से ही प्लानिंग करनी है। जैसे छोटे छोटे काम जो हैं, जो आपको पता है कि हर महीने के आपके खर्चे हैं ही, जो फिक्स्ड खर्चे हैं जो आपको पता है वो आने ही वाले हैं, तो पहले ही से उनके लिए जो है वो पैसे अलग से जोड़ दिए जाए। जैसे कि मैंने कहा नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाली हूँ कि आप अपने पैसे कैसे बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ना कम तो होने नहीं चाहिए, पर कैसे बढ़ाएंगे या बचाएंगे। बस कहने का मकसद यही था और कोशिश यही थी कि चूंकि ऐसे दिन बनाए गए हैं ये ध्यान दिलाने के लिए कि आप जो है इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। हम हमारी फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, हम हमारी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, साथ ही साथ हमारी फिनेंशियल हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना इन बाकी सारी चीज़ों पर। पैसों के मामले में आप जो है जितना कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ किस्मत के ज़रिए नहीं या ये आप कोई स्कीम सुन के उसकी वजह से नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप अच्छी जानकारी और लगातार अच्छी आदतों में ढलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपने पढ़ना है, आपने समझना है, फिनेंशियल एडवाइस पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट आते हैं, शोज़ आते हैं जो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी समझ लगा के उसके बाद ही जो है अपनी ज़िंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। अब चूंकि पैसों की बात कर ली, इतने मज़ेदार से बढ़िया बढ़िया बहुत सारे गाने सुन लिए हमने पिछले 35 मिनटों में, अब जो है माहौल को थोड़ा सा मैं रोमांटिक करती हूँ। क्यों? अरे भाई, फ्राइडे है, वीकेंड है और फिर अंदाजे बयां में तो हम ऐसे ही कुछ खूबसूरत नगमे, गज़लें, सूफी गाने और शेर व शायरी करने ही वाले हैं, तो अभी से क्यों ना माहौल उस तरफ स्लो ट्रैक पे ले चलते हैं अपनी गाड़ी को। बात कर रही हूँ फिल्म तारा रंबम की, जहाँ पे ऐसा ही हुआ था, ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग की नहीं गई, अचानक से जो है वो पूरा का पूरा जो परिवार है वो गरीब हो जाता है और जिन्होंने वो फिल्म उस समय देखी है वो अपने आप में एक बहुत ही हार्ट फेल्ट और एकदम ऐसे बड़ी उदास करने वाली फिल्म थी कि कैसे कुछ डिसीजंस लाइफ के जो हैं वो सब कुछ बदल के रख देते हैं। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बर्थडे गर्ल के बारे में भी, जिनकी आवाज़ में ही गाना सुनिधि चौहान। 7 से 8 के बीच में हम इनके गाने सुनेंगे, ढेर सारे, बहुत सारे। फिलहाल इनका साथ दे रहे हैं शान और हे शोना। कहीं मजा आइए, बने रही है FM रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली ऑस।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लव यू जिंदगी। नहीं, मैं गाऊंगी तो फिर मैं आपको गाना कैसे सुनाऊंगी, है ना। 5:46 दिखा रही है घड़ी और वक्त हो रहा है कि हम धीरे धीरे इस वाले प्रोग्राम को यहीं समेटें, क्योंकि फिर अगले प्रोग्राम की भी तो बारी आएगी, है ना। और 7 बजे हमारा जो खास कार्यक्रम आज है वो भी मैंने आप तक

आया है स्वातंत्र्य दिन की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र को दिया गया संदेश हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे से एफएम रेनबो पर। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ। और फिलहाल बात हो रही है फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो अगर बात हो पैसों की तो ये एक फिल्म है जो कई साल पहले आई थी, और उस टाइम पर जब इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और इसकी कहानी जब लोगों ने देखी, मज़ेदार तो थी पर बड़ी हैरान करने वाली थी कि कैसे पैसों के लिए जो है श्रीदेवी अपने जीवन साथी को ही अदला बदली कर देती हैं। जिन्होंने फिल्म देखी वो जानते हैं कि उर्मिला मातोंडकर ढेर सारा पैसा लेके आती हैं सूटकेस भर के, एक्चुअली उन्होंने फिल्म में वैसे दिखाया है। और अनिल कपूर जो हैं उनके साथ उनके जीवन साथी जो हैं वो बन जाते हैं। और हिंदी फिल्मों की बात करूं और पैसों की बात करूं, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं, तो हिंदी फिल्मों का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था ये, जहां पे कोई ना कोई हीरो हीरोइन में से कोई एक है जो बहुत अमीर है और एक जो है वो बहुत ही गरीब है, और फिर दोनों को प्यार होता है और फिर ढेर सारी लड़ाई ठुम ठुम बहुत कुछ। फिर चाहे वो राजा हिंदुस्तानी हो, 1973 में आई हुई फिल्म बॉबी हो, या साल 2000 में आई कहो ना प्यार है, या फिर 2001 में कभी खुशी कभी गम, जहाँ पे काजोल जो है उन्हें कौन पसंद आ जाता है, शाहरुख को पसंद आ जाती हैं वो। और उसके साथ साथ 1989 में आई हुई ऑफिशियली सलमान खान की डेब्यू फिल्म, जिसका गाना मैं आपको अभी सुनवाने वाली हूँ लता जी और एसपी बालासुब्रमण्यन की आवाज़ों में। आप सुनेंगे शाम होने आई, ऑलमोस्ट होने आई बिल्कुल, और अंदाजे बयान में भी शाम की ही बात करने वाले हैं हम, जिंदगी की शाम के बारे में। कब कहाँ कैसे यहीं पे 107.1 FM रेनबो पर, कहीं मचाइए, वी आर म्यूजिकली यॉर्स।

भाई मैं तो आई हुई हूँ 5 बजे से, आप कहाँ चल दिए? कहीं नहीं जाना है, ये चल दिए और वो पीछे पीछे जा रही हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं जाना है। 107.1 FM रेनबो ट्यून इन किया हुआ है आपने लव यू जिंदगी प्रोग्राम, और चूंकि जिंदगी है, जिंदगी से जुड़ी खास बात है, ज़रूरी बात है, और मैं ये नहीं कहूँगी सबसे ज़रूरी, बट हाँ थोड़ी सी ज़रूरी तो है ना, फिनेंशियल अवेयरनेस की बात हो रही है, चूँकि आज का दिन जो है वो फिनेंशियल अवेयरनेस डे के नाम से जाना जाता है। और इस दिन के लिए छोटे छोटे जो हैं वो टिप्स, क्योंकि अभी हम इस प्रोग्राम को समेटेंगे, उसके बाद 6:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार, और 6:15 पर दोबारा होगी मेरी और आपकी मुलाकात। मैं कौन? मैं आपकी आशना, जो आपके साथ बने रहूँगी पूरे 8 बजे तक। 6:15 से अंदाजे बयां, कुछ सूफी गाने, कुछ शेर व शायरी, कुछ गज़लें करनी है आपका इंतज़ार। कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले यहाँ वाला तो हम समेट दें, है ना। तो चूँकि बात फिनेंशियल अवेयरनेस की हो रही थी, जहाँ मैंने आपको चलते फिरते में ये बता ही दिया था कि अपनी फिनेंशियल हेल्थ की भी जाँच टाइम टू टाइम करते रहा कीजिए, फिर उसमें चाहे वो आपकी इनकम हो, यानी जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो, या चाहे फिर वो आपके खर्चे हों, या कोई कर्ज है, जो डेट है वो आपने लिया हुआ हो, उसकी हमेशा लिस्ट बना के रखें, ताकि आपको पता हो कि आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कितने हैं, उसके साथ साथ आने वाले या अचानक आने वाले जो खर्चे हो सकते हैं उसके लिए एक इमरजेंसी फंड हमेशा ज़रूर बनाए रखें, भले थोड़ा सा हो पर बना के ज़रूर रखें कि अचानक ओहो ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ। और उसके अलावा अगर आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई लक्ष्य है उससे जुड़ी, जैसे मैंने आपको कहा, अच्छे प्रोग्राम्स सुनिए, बुक्स पढ़िए, जानकार लोगों से सलाह लीजिए, जैसे फिनेंशियल हेल्थ के लिए सीए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर, तो अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो उनसे जाके बात कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ना। तो अब मैं आपको और ज़्यादा इस चीज़ पे बताऊंगी नहीं, क्योंकि आप तो हैं ही बड़े स्मार्ट, मुझे पता है। मैं आपको छोड़े जा रही हूँ दो गानों के साथ, उन फिल्मों से जिसकी हमने बात की, सुपर डुपर हिट रही, म्यूज़िक भी जोरदार रहा और साथ ही साथ टॉपिक भी पैसों से जुड़ाई। बस चलते चलते यही कहना है कि ज़रूरी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह से जो रिश्ते नाते हैं वो ख़राब हो जाए। इसी बात पर फिनेंशियली अवेयर रहिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूज़िकली आज़।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए कभी भी कहीं भी 24/7। अभी आप सुन रहे थे मराठी में प्रादेशिक समाचार। अब आपका स्वागत कर रही है आपकी आशना प्रोग्राम अंदाजे बयां में कुछ सुरीले प्यारे सुफियाना से रोमांटिक से गाने कर रहे हैं आपका इंतजार। कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं दिल से।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
2: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
2: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
3: म्यूजिकली योर्स।
4: दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
5: वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो, अंदाजे व्याम में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि इस दिन की या इस शाम का ना हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि घड़ी की जो सुइयां हैं वो कह रही हैं कि हफ्ते भर की जो पूरी भाग दौड़ थी अब थमने को है ना। वीकेंड जो आ गया है, बाहर शाम ढल रही है, आसमान का रंग आई एम श्योर बहुत ही सुंदर हो गया है। आप बता सकते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने हम तक मैसेजेस पहुँचाए हैं, बड़े प्यारे प्यारे से इमोजीज भेजे हैं शाम की चाय और कॉफ़ी के मग की। पंकज मोहड़, वैदेही, हितेंद्र दास, अशोक पाटिल, विजेंद्र, शुभदा,

अजय, प्रमोद, दत्तात्रेय यादव, दीपा, साथ ही साथ गणेश पाटिल, दिलेश वंजारी, तीन अलग अलग अंकित ने हमें मैसेज किया है, संतोष दिनकर, राकेश माथुर, रामदास तांबे, आप सभी को भी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अब शाम की बात हो रही है, ज़िंदगी की शाम की जो बातें होंगी तो शाम से जुड़ी कुछ शेर व शायरी तो होगी, उसके साथ साथ होंगे कुछ रूहानी से गाने। पहुँचेंगे कहाँ से कहाँ तक, दिल से दिल तक तो पहुँचेंगे, सीधा FM रेनबो के स्टूडियो से आप तक। वो कहते हैं ना, वो ना आएंगे हमें मालूम था इस शाम भी, वो ना आएंगे हमें मालूम था इस शाम भी, इंतज़ार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहते हैं। पेपॉन की आवाज़ में सुल्तान फिल्म से सुनिए अगला गाना, ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली ऑस।

लहरों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना,

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

0: तेरे झूठे कसमे वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।
1: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
3: आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिक लियोज, एक बार फिर से आपका स्वागत है 107.1 FM रेनबो पर। प्रोग्राम चल रहा है अंदाजे बयां और 6:31 आज सेकंड दिखा रही है घड़ी। बिल्कुल, वक्त जो है टिक टिक टिक टिक टिक, कहते ना घड़ी चलती रहती है पर टिकती नहीं है, चलते चले जा रही है। कुछ खूबसूरत रूहानी से गाने आप तक पहुंच ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ठीक 7 बजे, शाम के 7 बजे, स्वतंत्रता दिन की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र को दिया गया संदेश हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आप सुन पाएंगे 107.1 FM रेनबो पर। तो आपको कहीं नहीं जाना, बने रहना हमारे साथ। फिलहाल अंदाजे बयां में बात हो रही है शाम की, जिंदगी की शाम की, जहाँ पे शाम से जुड़े कुछ गाने भी हैं आप तक, कुछ काश भी हैं जो जुड़े हैं कि काश उस वक्त ये कह दिया होता, ये कर दिया होता, किसी को रोक लिया होता या खुद रुक जाते। बहुत सारे काश जो है ना, कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

0: हरिहरन की खूबसूरत सी आवाज में आपने सुना काश, और ये आवाज आपकी आशना की जो आपके साथ बने रहेगी पूरे 8 बजे तक। और चूंकि शाम की बात हो रही है, जिंदगी की शाम की बात हो रही है और काश की बात हो रही है, इस गाने ने काश ये बता दिया कि होने को तो बहुत कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं ना, काश हो जाता। तो दो खूबसूरत सी लाइनें कहीं ढूंढ के लेके आई है आपकी आशना, जो आप तक पहुंचाना चाहेगी, कि वसीम बरेवली की कलम से निकले बोल हैं जो कहते हैं कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, कहीं भी नहीं रुक रहे हैं ना। तो वीकेंड आ रहा है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, थोड़ा आराम से स्लो जाइए, है ना। और वहीं इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो ना आजाद, शाम होने को है, अब तो घर की तरफ लौट चलो। घर की तरफ जाने को अभी वक्त तो है, बिल्कुल है, बहुत सारे और खूबसूरत गाने आपके तक पहुंचाने हैं। साथ ही साथ ठीक 7 बजे मैंने जैसे आपको बताया स्वतंत्रता दिन की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र को दिया गया संदेश, जो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुन पाएंगे 107.1 FM रेनबो पर, उसके साथ साथ बहुत सारे और खूबसूरत गाने, बहुत बढ़िया बातें कर रही हैं आपका इंतजार। कहीं मत जाइए, बने रहिए FM रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली योर्स। वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो,
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
4: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: शाम से आ

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल साहब, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श

प्रस्तुत किए। भारत माता के उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्श के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है।

हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों के औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक और हमारे देश में

सबसे बड़ी युवा आबादी है, तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदी पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुषुलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country and abroad celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that
ऑल सिटीजन्स आर एबल।

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिन की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र को दिया गया संदेश हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। 7:55 दिखा रही है घड़ी। वक्त हो गया है कि हम प्रोग्राम हम तुमको यहीं समेटें। ठीक 8 आप सुन पाएंगे हमारा इंग्लिश कार्यक्रम रॉक विद चौक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को खुश रखिए। आप सभी को आकाशवाणी एफएम रेनबो परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब भी आपको लगे और आपको जरा भी ऐसा सोच में आए कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, बस एक बार रुक कर सोचिए कि आपने आपके देश के लिए क्या किया। जय

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: Welcome back to listen to 107.1 FM Rainbow. Yes, there's a lot of things that we like to call home, but truly it's the green grass of home. It's the home that we like to imagine as safety, as comfort, as what we'd like to believe our first memory of happiness. But then the world comes in and you get to see some colors of the world and you get to see the true colors of the world. So here is Sydney Cindy Looper with True Colors. And once you're done with this, let me know if you're thinking about home as well. And what are your favorite memories of home? 865-766-1071. Your favorite memories of home. What do they look like? What are they like? Let me know.

0: फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
2: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना

0: कहना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
4: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
5: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
6: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्ण रेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गाँव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा

0: और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपकी वाणी आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
2: तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जी हाँ, यही वो भाव थे जिसने हमारे देश की आजादी के आंदोलन को प्रबल बनाया था, और यही वो भाव हैं जो कि आज भी हमारे देश की सीमाओं को अक्षुण रखे हुए हैं। और जब बात होती है देश प्रेम की, और मौका है स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर का, और देश मना रहा है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, तो ऐसे में वंदे मातरम को और करीब से जानने के लिए मैं रुचि जोशी आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा स्पेशल पॉडकास्ट, जो कि रक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया रेडियो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और वंदे मातरम को और करीब से जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भुवन झा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। स्वागत है सर।
3: नमस्कार
2: सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वंदे मातरम का क्या संदर्भ है, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हमारे देश की आजादी का एक विजय घोष रहा है, तो इसका हमें थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए, और आनंद मठ में इस गीत को लेने का क्या उद्देश्य था सर?
3: देखिए, यह विजय घोष भी है और मंत्र भी है
2: जी।
3: यह एक परतंत्र देश की आजादी का मंत्र है और एक अपनी धरातल तलाशने का मंत्र है। जिस युग में बंकिम जी रहे थे, लिख रहे थे, वह भारतीय बौद्धिक जगत के उत्कर्ष का समय था। लोग अलग अलग धुरी ढूंढ रहे थे। एक जो पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव था, उसके विरोध में भी एक सांस्कृतिक जागरण हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो ब्रह्मों का प्रभाव है, जो एक मोनोथिज्म की बात हो रही थी और जो बार बार उपनिषदों की बात हो रही थी, वेदांत की बात हो रही थी, उससे आगे बढ़कर बंकिम पुराणों की बात कह रहे हैं, भागवत की बात कह रहे हैं, कृष्ण की बात कह रहे हैं, गीता की बात कह रहे हैं, और जो सगुण जो ईश्वर है उसको निराकार ब्रह्म से जोड़ करके एक जनमानस को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आनंद मठ की रचना करते हैं, तब तक वह इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि जो भारत का शोषण हुआ पिछले 100-150-200 वर्षों में, उससे कैसे निजात दिलाई जाए। और जो आर्थिक राष्ट्रवादी थे, वो पहले से इन बातों को लिख रहे थे कि बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, लेकिन इनका एक अलग तरह का दृष्टिकोण था। इनका दृष्टिकोण यह था कि जिस तरह से यहां पर एक स्व का नाश हुआ, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हुआ, संस्कृति का ह्रास हुआ, हमने पाश्चात्य मापदंडों को अपनी प्रगति का सूचक मान लिया, जो हमारे नैतिक मूल्य थे उसको हमने उतनी तवज्जो नहीं दी, उतना मूल्य प्रदान नहीं किया नैतिकताओं को, और वह राके और हडर को पढ़ चुके थे। जैसे राके और हडर यह कह रहे हैं कि हर युग का अपना एक इतिहास है, हर सभ्यता का अपना एक मूल्य है, तो अलग अलग युगों में यदि सभ्यताएं हों या अलग अलग जगहों में यदि कोई सभ्यताएं हों, तो उसको एक ही मापदंड से नहीं जांचना चाहिए। तो उन्होंने भारत के विकास को, उस समय के इतिहास को नापने के लिए उसके मूल्यों को ही धरातल में बेस बनाने की कोशिश की, इसलिए उनका मूल्यांकन बिल्कुल अलग तरह का है। आनंद मठ एक ऐसे सन्यासी विद्रोह की गाथा है, जो विद्रोह कर रहा, जो जिस तरह से बंगाल में शोषण हुआ उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है, और जंगल में एक आनंद मठ बनाते हैं, एक मठ बनाते हैं जहां जो लोग रह रहे हैं सत्यानंद के नेतृत्व में, वह सब अपने को संतान मानते हैं। वही उनको सत्यानंद उनको इंस्पायर करने के लिए, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए वंदे मातरम गीत गाते हैं। यह इसका संदर्भ है, और इसको 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गाया, धुन भी दिया और इसको गाया भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में, तो इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक आधार मिल गया, वहीं से यह स्वतंत्रता का गीत बनता गया।
2: तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे देश में जो आज़ादी का दौर था, कहीं ना कहीं लोग स्व को भूल चुके थे, स्वदेशी को भूल चुके थे, और वंदे मातरम ने उनको याद दिलाया कि स्व क्या होता है। तो सर, हम आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि स्वदेशी आंदोलन जब

0: चल रहा था और जब बंगाल विभाजन का दौर था 1905 का, तो उस समय वंदे मातरम ने किस तरीके से लोगों के मन में देश के लिए, स्वदेश के लिए एक भाव उत्पन्न किए, उसका क्या रोल था सर?
1: देखिए, यदि आप थोड़ा और पृष्ठभूमि में जाएंगे
0: जी,
1: और जो कांग्रेस पार्टी बनी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना, वहाँ वह अंग्रेजों का विरोध उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जैसा कि लोगों की इच्छा थी। वह भारतीयों के मुद्दों को पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो मॉडरेट फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ देख रहा है, वह ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस की बात भी कह रहा है, उससे इतर होकर के एक अलग तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें शिवाजी, कृष्ण और शक्ति, इन तीनों को फिर से उठाने की, उभारने की कोशिश हो रही है। कृष्णचरित लिखा बंकिम चंद्र ने भी, अरबिंदो ने भी बाद में लिखा, गीता रहस्य तिलक ने लिखा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे जो कि क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर गए थे, उन्होंने भी कृष्ण तत्व लिखा, रोमेश चंद्र दत्त ने महाराष्ट्र जीवन प्रभात लिखा, टैगोर ने 1904 में शिवाजी पर एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा, एक निबंध लिखा, और शिवाजी उत्सव इन्होंने मनाया, तिलक ने मनाया, और शक्ति और तंत्र जो पूर्वी भारत में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उसको बंकिम ने पुनर्जीवित किया एक बड़े जनसमूह, जनसामूहिक स्तर पर। इसलिए आप देखेंगे कि शक्ति की आराधना हो रही है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जब बंगाल का विभाजन होता है, और वह सांप्रदायिक आधार पर हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने के लिए हो रहा है, तो एक बड़ा बड़ा विद्रोह शुरू होता है बंगाल, और लोगों को लगता है कि हमें इमैस्कुलेट कर दिया गया, हमें तो पूछा ही नहीं जो इतना बड़ा कदम उठाया, जो जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर इतना पड़ना है, उसका निर्णय अंग्रेजों ने खुद ही खुद ले लिया। तो उसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और वह आंदोलन जो पार्टीशन विरोधी आंदोलन है, वह धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन में परिवर्तित हो गया, उसका सकारात्मक पक्ष भी आ गया। जब वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जब पार्टीशन का विरोध शुरू हुआ, वहां वंदे मातरम एक मंत्र के रूप में उभर करके आया, और उसी ने इंस्पिरेशन, द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द स्वदेशी आंदोलन वॉज वंदे मातरम। उसी प्रभात फेरी में भी वही गाया जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं वहीं पर गाया जा रहा है, कुछ इस हद तक कि 1905 से 8 के बीच में लोकल कमिटीज ने, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वंदे मातरम गाने पर कई जगहों पर रोक भी लगा दी, और 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, वहां टैगोर के परिवार की सरला देवी चौधरानी को गोखले ने बुलाया गाने के लिए, उन्होंने गाया, लेकिन इशारा यह था कि इतना स्पष्ट मत गाइए कि लोगों को पता चल जाए, अंग्रेजों को पता चल जाए कि ये वंदे मातरम का ही गायन हो रहा है। तो जहां 7 करोड़ का फिगर था, उसको उन्होंने 30 करोड़ का फिगर बना दिया।
0: अच्छा,
1: तो उस तरह से थोड़ा बहुत एब्रीविएट करके उसको सरला देवी चौधरानी ने गाया
0: जी।
1: और 1906 में ही बारिसाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, अप्रैल 1906 में। आप मान सकते हैं कि जनमानस के, मतलब एक बड़े समूह में पहली बार इसको गाया गया, जिस पर कि लाठी चार्ज हुआ, इसको बैन किया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लीड कर रहे थे, इन सबको अरेस्ट किया गया, अश्विनी दत्त वहां के लोकल लीडर थे, और वहां से यह और भी विस्तार हुआ। बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम अखबार शुरू किया, और कुछ ही महीनों में उसका एडिटरशिप अरबिंदो ने ली, तो अरबिंदो ने बंकिम को राष्ट्रीय ऋषि की संज्ञा दी, और एक और अखबार वह संपादित करते थे सांध्य, तो सांध्य में उन्होंने लिखा कि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनना चाहिए, यदि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनेगा, तो जो 7 करोड़ लोग है जिसकी चर्चा वंदे मातरम में हो रहा है, और 1872 के सेंसस पर आधारित था वो फिगर, और जो 14 करोड़ भुजाएं हैं, वह अवतरित हो जाएंगी, वह आगे आ जाएंगी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। वह जो इंस्पिरेशन है, वह आगे बढ़ाने का काम अरबिंदो ने किया। अरबिंदो की भाषा बहुत प्रखर थी, अरबिंदो वॉज ए वेरी जीनियस, वॉज ए वेरी एक्सेप्शनल माइंड, तो उनकी लेखनी का असर बहुत ज्यादा हो रहा था। और वंदे मातरम सिर्फ वही नहीं रुका, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, हर जगह वंदे मातरम गाया जा रहा है, और विदेश में भी। 1906 में जब यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है, तो बंगाल में वंदे मातरम का झंडा भी फहराया जा रहा है, जहां बीच में वंदे, और 3 रंग का है, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, उसी तरह का झंडा, एग्जैक्टली सेम नहीं, कलर पैटर्न वही है, लेकिन फोटोग्राफ्स कुछ अलग हैं, उसी तरह का झंडा मैडम भिकाजी कामाने स्टुगर्ट में 1907 में, जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उन्होंने उस झंडा को वहां फहराया। जिसको हम इतिहासकार यह भी

0: मानते हैं कि पहली बार भारतीय झंडा को फहराया गया
1: विदेश
0: वहां पर फहराया गया। और मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम अखबार भी शुरू करवाया, सपोर्ट किया वहां पर, पहले जिनीवा में और बाद में बर्लिन में
1: जी।
0: और उसके हरदयाल जो लाला हरदयाल जो वहां से आए थे अमेरिका से, उन्होंने उसको संपादित करना शुरू किया, यहीं दिल्ली से गए थे पहले
1: जी जी।
0: और वीवीएस अय्यर ने भी किया, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने भी किया। उस वंदे मातरम की जब प्रति महाराष्ट्र में आ रही थी तो यहां पर उसको बैन लगा दिया,
1: बैन लगा दिया गया।
0: तो वंदे मातरम जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस है, रिवोल्यूशनरीज हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उसको भी इंस्पायर करने का काम कर रहा है। देश में तो है ही, जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां भी वंदे मातरम गाया जा रहा है। और इस अवधि में 1908 के बीच में कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी कवि थे सुब्रमण्यम अय्यर तमिलनाडु के, उन्होंने दो बार इसका अनुवाद किया, दो अलग अलग संदर्भों में, 1905 में 1908 में। गुजराती में भी इसका अनुवाद हुआ, मराठी में हुआ, तेलुगु में हुआ, मलयालम में हुआ, उर्दू में हुआ, हिंदी में हुआ, कई भाषाओं में दर्जनों से ज्यादा ट्यून बने। आज के समय में देखेंगे तो 100 से ज्यादा ट्यून आपको मिलेंगे वंदे मातरम का। और कुछ जो संस्कृति विभाग ने एक वेबसाइट डिजाइन करके उसमें बहुत सारे ट्यून रखे भी हैं
1: जी सर,
0: जो अलग अलग ट्यून में कब कब गाए गए गाना को। तो यह अद्भुत है, इसमें इंस्पिरेशन है और इसके शब्द और इसका धुन, वह दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है आगे बढ़ने के लिए।
1: तो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि वंदे मातरम को उस समय काफी जगह बैन कर दिया गया था, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था उसमें वो बैन करना वंदे और वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभर के आए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी चीज को बैन करते हैं तो लोग और उसको गाना चाहते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अखिल भारतीय स्तर पर कोई कानून बन गया इसको बैन करने का, लोकल लेवल पर डिसीजन लेते थे कि ये सेडिशस सॉन्ग्स है, ये अंग्रेज विरोधी गाना है, ये साम्राज्य विरोधी गाना है, तो लोकल लेवल पर इसको बैन करते थे। उससे लोग और अलग अलग ढंग से, जैसे कभी गा नहीं रहे लेकिन बैच लगा लिया, झंडा उठा लिया, क्योंकि झंडा को आपने बैन नहीं किया तो झंडा उठा लिया, कभी बैच लगा लिया, कभी गा रहे हैं तो उसमें कुछ शब्द बदल दिए, और इस तरह से वंदे मातरम। और देखिए, जो क्रांतिकारी वर्ग है
1: जी,
0: 1905 से 6 से ईस्वी से क्रांतिकारी वर्ग बड़े स्तर पर उभरता है, उससे पहले थोड़ा सा सीमित है, महाराष्ट्र में है, चापेकर ब्रदर्स हैं, सावरकर ने अभिनव भारत की रचना की है, बनाया है, निर्माण किया, और शिफ्ट थोड़ा सा इंग्लैंड में इंडिया हाउस बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वहाँ कई कई सारे क्रांतिकारी जिसमें कि सावरकर भी 1906 में शामिल होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। लेकिन बंगाल के भीतर जो अनुशीलन और जुगांतर दो सबसे बड़े सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इसी समय में आगे बढ़ते हैं। जितने क्रांतिकारी देखेंगे वो कहीं ना कहीं इन चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं
1: जी। तो इसीलिए वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभरा। और जैसे आपने मेंशन किया कि सर विदेशों में भी वंदे मातरम गाया गया था, तो विदेशों में इसका क्या इम्पैक्ट था और उसका हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा?
0: देखिए, जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस हैं, जो रिवोल्यूशनरीज हैं, वो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, और जो मिडिल ईस्ट है उसके कुछ देशों में भी हैं। वहाँ जहाँ पर इनको ये लग रहा है कि कानूनी रूप से इसका विरोध नहीं है, वहाँ उसको लिखने का गाने का इस तरह की परंपरा है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार निकाल रहे थे इंग्लैंड में, उसमें काफ़ी लिख रहे थे, और वो फिर यहाँ पर भी इम्पोर्ट होते थे, यहाँ पर भी आता था, यहाँ कई बार उसको बैन भी किया गया। अर्थ यह है कि जो वंदे मातरम का एक कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जा रहा है, जो गांधी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसमें गाया जा रहा है, लेकिन जो सीक्रेट सोसाइटीज, जो क्रांतिकारियों का समाज है, जहां छुप करके बहुत तरह का काम करते हैं, वहां इसकी लोकप्रियता बनी हुई। जो नौजवान भारत सभा जो शुरू किया भगत सिंह ने, उसमें गाया जाता था, उसके दस्तावेज में लिखा हुआ है। और कई सारे क्रांतिकारी जो शहादत में जा रहे हैं, जो अपने को आहूत कर रहे हैं, वह वंदे मातरम उस समय भी गा रहे हैं जब उनको दंड के लिए ले जाया जा रहा है, जब वो शहादत के लिए जो अपनी आहुति देने जा रहे हैं उस समय भी। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम है, सूर्य सेन का नाम है, खुदीराम बोस के प्रोसेशन में जो उनकी शव यात्रा हो रही है, उनका जब प्रोसेशन हो रहा है तो उसमें लोग गा रहे हैं वंदे मातरम को, और वो बहुत कम उम्र के थे। तो इस तरह से, और सरदार उधम सिंह जब वो भी जा रहे हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में, तो वहां पर भी वंदे मातरम लिख करके उसको खत्म करते हैं, शुरू करते हैं, खत्म करते हैं। वंदे मातरम एक सैल्यूटेशन हो गया, एक दूसरे को क्रांतिकारी एड्रेस कर रहे हैं वंदे मातरम कह करके, और

0: जब उनको लग रहा है कि हम अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कौन सा शब्द सबसे उपयोगी होगा, सबसे अप्रोप्रिएट होगा, तो वह है
1: वंदे मातरम। सर, जैसे आपने कहा कि क्रांतिकारियों के लिए एक ये सैल्यूटेशन बन गया था वंदे मातरम, तो जो वंदे मातरम की अगर हम लिरिक्स पे जाते हैं तो उसमें है त्वम ही भक्ति, त्वम ही शक्ति, त्वम ही प्राणा शरीरे, तो कहीं ना कहीं ये लाइन ही दर्शाती है उनके समर्पण को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप इसके लिरिक्स को देखेंगे, वंदे मातरम के शब्दों को देखेंगे, तो ये अद्भुत है
1: जी।
0: यह किसी युग में, किसी दौर में एक ही बार लिखा जा सकता है, ये बार बार यह अवतरित नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल सर,
0: जिस भाव में बंकिम ने लिखा होगा, जिस मन स्थिति में, वह अद्भुत रहा होगा, वह इतिहास के एक मील का पत्थर है। इसमें देखेंगे कि प्रकृति की चर्चा भी है, भारत के भूगोल की चर्चा भी है, और उस भूगोल में मातृत्व को, जो मदर इंडिया है, जो भारत को शक्ति के रूप में अवतरित करने की बात है, दिखाने की बात है, वो अलग तरह की है, वह अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे हवाओं की बात कह रहे हैं कि जो दक्षिण से जो शीतल हवाएं आ रही हैं, और खेत खलिहानों की बात है, ग्रीन कलर की बात है, जल की बात है, सुजलाम सुफलाम, फल मतलब कोई भी चीज जो प्रोड्यूस हो रही है, जल जो मतलब एक सैक्रेडनेस है जल के प्रति हमारे हिंदुस्तानियों का, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए 1872 के सेंसस से 7 करोड़ का फिगर लिया बंकिम ने, क्योंकि 1875 में इसकी रचना हो रही है, और यह कह रहे हैं कि माता, क्योंकि यह बार बार स्पष्ट हो रहा है कि इतने सारे हमारे देश में इतने लोग हैं, फिर भी भारत माता परतंत्र क्यों है, हम शक्तिहीन क्यों हैं, तो कह रहे हैं कि 7 करोड़ संतानें हैं, और आनंद मठ में सत्यानंद लोगों को बार बार संतान कह के बोलते हैं कि हम लोग सब संतान हैं, तो 7 करोड़ संतान हैं और 14 करोड़ भुजाएं हैं, उन 14 करोड़ भुजाओं में जो तलवारें हैं, इतनी शक्ति है, तो यह माता अबला कैसे हो सकती है। कहते हैं माता को कि आप ऐसे, इतनी शक्ति है तो आप अबला कैसे हो सकती है। उसके बाद विद्या की बात कह रहे हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों का बार बार जिक्र आ रहा है प्रतीक के रूप में, विद्या का जिक्र आ रहा है, शक्ति का जिक्र आ रहा है, दुर्गा का जिक्र आ रहा है, उसके 10 आयुधों का जिक्र आ रहा है, जो इंस्पायर करता है लोगों को युद्ध में जाने के लिए, प्रेरित करता है कि आप किसी भी तरह का परतंत्रता अधीनता स्वीकार न करें। और फिर वह आनंद मठ में एड्रेस करते हैं कि आप ही भक्ति हैं, आपके हृदय में ही मर्म है, जितने शरीर है संतानों के सबके प्राण आप ही हैं, तो वहीं से उद्गम स्थल है, जो उद्गम स्थल है जिसको आप मातृत्व कहते हैं, वही असली शक्ति का स्रोत है, उसको बार बार नमामि कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। इससे अच्छा इंस्पिरेशनल सॉन्ग क्रांतिकारियों को मिल नहीं सकता।
1: बिल्कुल सच बात है सर, कि इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल सॉन्ग न तब मिल सकता था, और आज के परिपेक्ष में सर अगर हम देखें तब भी मुझे लगता है कि इसके भाव उतने ही सार्थक हैं। आपका क्या विचार है?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो देखिए, जो अधीनता है, परतंत्रता है, सशक्तिकरण है, विकास है, यह हमेशा चलता रहा। ठीक है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उससे, उस गुलामी से हमें निजात मिला, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन यात्रा वहां स्वतंत्रता के साथ ही खत्म नहीं होती, यात्रा लगातार चलती रहती है। हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्सा हैं, एक कॉम्पिटिशन का दौर है, और यह मान करके चलिए कि हमेशा आप सुरक्षित नहीं हो सकते, तो आपको सजग भी रहना है। जब आप सजग रहते हैं तभी आप सुदृढ़ हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित कर रहे हैं, आप अंदरूनी कुछ, मान लीजिए विद्रोह हो रहा है, उसको, उससे देश को सुरक्षित कर रहे हैं, तो आपको हमेशा कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। वह इंस्पिरेशन वंदे मातरम देता है, क्योंकि हम जब भी लड़ते हैं, जब हमारा सैनिक लड़ता है या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज लड़ते हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा यही होता है कि हम अपने मदरलैंड की सुरक्षा कर रहे हैं, हम भारत माता की सुरक्षा कर रहे हैं। और देखिए, जब वंदे मातरम पॉपुलर हुआ 1905-6 में, उसी समय में भारत माता की तस्वीर भी बनती, उसकी 4 भुजाएं हैं, उसमें वस्त्र है, अन्न है, शिक्षा है, दीक्षा है, ये चार अंग हैं उसके। और जो वंदे मातरम का मंत्र है वह इस भारत माता की तस्वीर से जुड़ जाता है, जो मैप है उसको एक विजुअल शेप मिल जाता है, जिससे कि आप अटैच हो सके, एक सैक्रेडनेस है कि देश सैक्रेड है, दिस हैज टू बी प्रोटेक्टेड, द कंट्री हैज टू बी प्रोटेक्टेड। इसी

0: इंस्पिरेशन से फौज लड़ती है, देश की सुरक्षा करती है, इसलिए यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि स्वदेशी आंदोलन के समय में था।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी हमारे सैनिक लड़ते हैं तो वो इसी भाव से लड़ते हैं। सर, चाहे सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियां हों या फिर इंडियन ओशन का विशाल समंदर, तो दोनों ही जगह जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उनके अंदर यही भाव होते हैं वंदे मातरम के, और सर यही है जो उनके मोराल को अपलिफ्ट करता है। तो सर, वर्तमान परिपेक्ष में अगर देखें तो उन सैनिकों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: उन सैनिकों के लिए यही संदेश है कि जितने तरह के लोग इस देश में सेवा कर रहे हैं वह सेवा सबसे बड़ी है। जो देश के चौहद्दी की सुरक्षा कर रहे हैं और अपने जान पर खेल करके सुरक्षा कर रहे हैं, उससे बड़ा पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है, उससे बड़ा धर्म हो नहीं सकता है, उससे बड़ा समर्पण हो नहीं सकता, वह अतुलनीय है।
1: सर, हमारे सैनिक जो अभी लड़ रहे हैं उसमें जैसे हमने देखा कि विमेन एम्पावरमेंट भी काफ़ी हो रहा है, चाहे महिलाएं हैं वो लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं, और जब हम वंदे मातरम के परिपेक्ष में ये चीज़ देखते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी। तो सर, विमेन एम्पावरमेंट इन आर्म फोर्सेस, अगर हम इस लाइन का परिपेक्ष वंदे मातरम में खोजें तो वो कैसे आप देखते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों से हम इसको देख सकते हैं। और हमने पहले भी बोला कि हर युग की कुछ संस्कृति होती है, हर युग में कुछ जोर होता है
1: जी।
0: तो हमारे युग का 21वीं शताब्दी का जोर है कि नारी सशक्तिकरण हो, और यह आर्म्ड फोर्सेज में भी, CAPF में भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी, और आप देखेंगे कई तरह की नौकरियों में भी ये चीज़ दिख रहा है। और आप ग्रॉस इनरोलमेंट देखेंगे हायर एजुकेशन में तो महिलाएं बहुत अच्छी स्थिति में आ रही हैं। इस गीत में यदि हम देखेंगे तो शक्ति के रूप में दुर्गा को लिया गया है और उसके 10 आयुध की बात कही जा रही है। तो और उसके अलावा सिर्फ दुर्गा ही नहीं है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, जो तीन प्रोमिनेंट भगवानों की चर्चा हो रही है वो तीनों ही नारी हैं, तीनों ही महिलाएं हैं। और यह तंत्र से आ रहा है, जो हमारे इतिहास में जो तंत्र का विकास हुआ वहाँ नारी को काफ़ी प्राथमिकता दी गई, वहाँ शक्ति का आह्वान हुआ। और यह कहा गया कि जितने भी भगवान हैं, जितने भी ईश्वर हैं, सबको शक्ति पर आधारित होना है, शक्ति अल्टीमेट है। दुर्गा का भी उसी प्रकरण में जिक्र आता है पुराणों में, और वंदे मातरम में बंकिम ने उनको काफ़ी प्राथमिकता दी, दुर्गा को, सरस्वती को, क्योंकि सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा, विवेक भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है। तो सब चीज़ों को मिला करके एक सशक्तिकरण का भाव है। और आर्म्ड फोर्सेज में पिछले दिनों की अपेक्षा अब वर्तमान में महिलाओं को काफ़ी जगह पर प्राथमिकताएं मिल रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और लड़ाकू विमान का आपने जिक्र किया, एंड वेरी गुड टू नो कि इस तरह से आगे आ रहे हैं। इससे जो महिलाएं पीछे रह रही हैं, जो लड़कियां पीछे हैं, वो भी इंस्पायर होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनको भी एक मिलता है कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में
1: जी।
0: और मैं तो लगातार देख रहा था कि जो बॉक्सिंग में जो जिन लड़कियों ने मेडल्स जीता, गोल्ड मेडल्स जीता, अद्भुत कार्य किए। यदि भारत की इज्जत को सुरक्षित रखा वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो महिलाओं ने रखा।
1: तो कहीं ना कहीं त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, ये वर्तमान परिपेक्ष में भी सर चरितार्थ हो रहा है।
0: एकदम चरितार्थ
1: जी। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जो हमारे NDA के कैडेट्स हैं, आर्मी के कैडेट्स हैं, जो यंग एकदम सोल्जर्स होते हैं, अगर उनको आप वंदे मातरम के ऊपर कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा सर?
0: एक तो उसको नियमित गाना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। जो देश सेवा है, जो जब आप देश के लिए लड़ते हैं, उससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। और इसी समर्पण भाव से लोग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन भी करते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन जॉब नहीं है, ये रूटीन जॉब से थोड़ा डिफरेंट है
1: जी,
0: थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप अपने जान माल की चिंता किए बगैर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर फ्रंट पे लड़ते हैं। और डिसिप्लिन, जो अनुशासन है आर्म फोर्सेज में, वह अनुशासन अन्यत्र मिलना मुश्किल है, क्योंकि वह अनुशासन अलग ढंग का है
1: जी।
0: और वो कमांड रिलेशनशिप अलग ढंग का होता है, बिना अनुशासन के आप देश की सुरक्षा कर भी नहीं सकते हैं। तो जिस अनुशासन से एनडीए के कैडेट्स, इंडियन मिलिट्री

0: एकेडमी के कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इतिहास को भी थोड़ा पढ़ें, वहाँ भी बलिदान हुए हैं, आप उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस देश को बनाने में, निर्मित करने में, आगे बढ़ाने में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा आर्म्ड फोर्सेज उसमें बहुत आगे है।
1: तो सर, जब बात आती है देश के निर्माण की और देश की सुरक्षा की, तो सिर्फ जो सैनिक हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर एक आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है देश के निर्माण में अपना योगदान दे। तो वंदे मातरम को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपका क्या संदेश है, वो भी हम सुनना
0: जो चाहेंगे। श्रोता यहाँ है, दर्शक है, उनको यह कहना जरूरी है कि जो राष्ट्रभक्ति है वह सेल्फलेसनेस से आती है। यदि हम अपने स्वार्थ को, छोटे स्वार्थ को आगे रखेंगे, फिर हम राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाते। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम अपनी चिंता करने लगते हैं, देश की चिंता नहीं करते हैं, समुदाय की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए हर नौजवान का, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आपका जीवन है सिर्फ आपके लिए नहीं है, उससे आपके समूह को कितना फायदा हुआ, आपके समुदाय को कितना फायदा हुआ, आपके क्षेत्र को कितना फायदा हुआ, आपके परिवार को कितना फायदा हुआ, आपके वृहत समूह को कितना फायदा हुआ। यदि आप एक सेल्फलेसनेस के साथ काम करेंगे, स्वार्थहीनता के साथ काम करेंगे, तभी राष्ट्र धर्म की परिधि में आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से वंदे मातरम इंस्पायर कर रहा है वह यही कह रहा है कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी मातृभूमि के लिए भी है, भारत माता के लिए भी है। इसीलिए उस भाव का यदि ध्यान में रखेंगे तो आप एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग उपयोगितावादी सिद्धांत में या व्यक्तिवादी सिद्धांत वाला देश नहीं है, यह समूह के, राष्ट्र के एक साथ आगे बढ़ने का सिद्धांत को लेकर के। और इसी संदर्भ में रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हरिवंश राय बच्चन ने 1948 में लेख लिखा राष्ट्रीय गीत पे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आपको सुनाना चाहूंगा उसके कुछ अंश। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो नगपति के उच्च शिखर से राजकुमारी के पदनख तक, गिरी गह्वर में, वन प्रांतर में, मरुस्थलों में, मैदानों में, खेतों में और खलिहानों में, गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में, बाहर घर में, स्वतंत्रता का महामंत्र बन कंठ कंठ से हुआ निनादित, कंठ कंठ से हुआ प्रतिध्वनित, जपकर जिसको आजादी के दीवानों ने कितने ही दी मिला जवानी, मिट्टी में काले पानी में, कितनों ने हथकड़ी बेड़ियों की झन झन झन पर जिसको गाया और सुनाया मन बहलाया, जबकि डाल वे दिए गए थे देश प्रेम का मूल्य चुकाने, कठिन कठोर घोर कारागारों में, कितने ही जिसको जिह्वा पर लाकर बिना हिचक के हंसते हंसते झूल गए फांसी वाले तख्ते पर, या खोल छातियां खड़े हुए गोली की बौछारों में।
1: बहुत सुंदर पंक्तियां आपने कही और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट जो कि वंदे मातरम पर आधारित था आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। और इसके साथ अपनी होस्ट रुचि को दीजिए अनुमति। नमस्ते, वंदे मातरम।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में

0: बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतर कर लाल किला तक पहुँच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो पहला मैसेज आया है वो आया है सौरभ का महाराष्ट्र से। वो लिखते हैं, बचपन की ख्वाहिश आज भी खत लिखती है, बचपन की ख्वाहिश आज भी खत लिखती है मुझे, शायद बेखबर ये नहीं जानती कि वो जिंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। जी हाँ, अब देखिए ना, कभी कभी डायरेक्ट बात ना करके इनडायरेक्ट की जाए तो वो भी अच्छी लगती है, बस समझने वाला होना चाहिए। और लास्ट में लिखते हैं लाजवाब प्रस्तुति, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो प्लीज़ नाम लिखकर ज़रूर भेजें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दोस्त जब आपस में बात करते हैं और पुरानी बातें याद आ जाती हैं आपको, खतों की और चिट्ठियों की जब बात चलती है तो अलग ही एक चेहरे पर नूर आ जाता है, अलग ही रंग आंखों का हो जाता है। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इस प्रोग्राम का नाम रंगे महफिल ही क्यों रखा गया, वो इसलिए दोस्तों ताकि जब गीत और गजलों की महफिल सजे तो आप और हम मिलकर इस रंग से एक नया रंग तैयार करें। जी हाँ, वो रंग जो इश्क का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, जो रंग ना तो कभी मिटाने से मिटता है और ना ही किसी के हटाने से हट सकता है। जी हाँ, गजलों और गीतों का दौर यूं ही चलता रहेगा। अभी हमारे पास बहुत वक्त है और आपके मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं, थोड़ी से मैसेजेस और इकट्ठे हो जाएं तो सोच रही हूँ तभी पढ़ा जाए, है ना। तो चलिए, तब तक घर से निकलिए, थोड़ा सा दूर तक चलिए, टहलिए, क्योंकि बरसात रुक चुकी है।

जी दोस्तों, मेरे पास जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो आया है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र जी से। तो वो लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे रेखा जी, वेलकम जी, आप कैसे हो जी? तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आपको दिल से याद करते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी आ जाती हूँ जब आप इतना याद करते हैं। और पंकज उदास जी का गीत नाम चिट्ठी आई है, इमोशनल बेहतरीन गीत है जी। आप हैं तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। देखिए, अब एक नहीं चार चांद लगवा दिए आपने और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रहा है जी। तो थैंक यू सो मच, वंदे मातरम जी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। वो लिखते हैं, आदरणीय आरसी रेखा चौधरी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं जी। और उच्च कोटि की प्रस्तुति, सदाबहार गीत, गजलें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल से बड़े वाला धन्यवाद। आपकी रात्रि जो जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी ब्लेसिंग्स आप देती हैं ना, तो मुझे सच में पढ़कर और देख कर ना मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है और ये मैसेज इन्होंने पूरा अभी नहीं लिखा है, तो भाई देखिए इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आप अपने मैसेज को ना पूरा ज़रूर लिखिए। जब हाले दिल जुबान से कहा ना जाए, दोस्तों जब हाले दिल जुबान से कहा ना जाए और कोई आंखों के जरिए उसे समझ भी ना पाए, तो जनाब तरीका एक

ही है। जी हाँ, अपने दिल की बात को दूसरे के दिल तक पहुंचाने का तरीका वो है खत, यानी लेटर। उतार दीजिए कागज और कलम के जरिए अपने दिल की सारी बातें, पर ध्यान रखिए कि कागज भीगने ना पाए क्योंकि बरसात का मौसम जो चल रहा है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका खत बिल्कुल सही सलामत दूसरे तक पहुंच जाए। और यही कहूंगी कि अपने जो भी अरमान है वो भी कभी कभी अपनी डायरी में उतार देने चाहिए, क्योंकि कुछ बातें, कुछ चीज़ें हम दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए डायरी लिखने का एक शौक पैदा कीजिए अपने अंदर, सच मानिए ये बहुत ही बेहतरीन शौक है। तो चलिए अपने एक गाने को सुनवाती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब दिल की बात कही नहीं जाती तो संगीत के जरिए, खत के जरिए और मोबाइल के जरिए दूसरे तक पहुँचाई जा सकती है ना।

0: जी हाँ दोस्तों, आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और समझ में आ रहा है कि आपको प्रोग्राम कितना पसंद आ रहा है। एक मेरे पास मैसेज आया, लिखते हैं, गुड इवनिंग आर जे आर सी जी, ग्लैड टू कैच यू ऑन रंगे महफिल। और ये लिखा है एम राजकुमार ने त्रिची से, और ये ऐप के जरिए हमें सुन रहे हैं। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि अब आप ऐप के जरिए हमें कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। एक मैसेज आया मेरे पास, मैं उत्तर प्रदेश से कैफ मैम, आप बहुत अच्छे सॉन्ग्स सुना रही हैं, तो थैंक यू सो मच। एक मेरे पास मैसेज है, रेखा जी नमस्कार, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिख दिया, तो दोस्तों आप हो सके तो छोटा मैसेज भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका मैसेज मैं लूँगी लेकिन इसको शॉर्ट करके पढ़ूंगी। एक और मेरे पास मैसेज आया शर्मा जी का मैसेज, तो उनको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। वो लिखते हैं कि अरे मैंने देर कर दी सुनने में तो कोई बात नहीं दोस्त, देर आए दुरुस्त आए। और एक और मैसेज मेरे पास है, रेडियो की मीठी धुन में जब रात उतरती है, एफएम रेनबो की आवाज दिल में उतरती है, दिन भर की थकान लेकर जब खिड़की पास बैठते हैं तो गजल की नर्म लहरों में कुछ ख्वाब नए सजते हैं। अमित अंचल सासाराम बिहार से लिखते हैं, तो भाई बहुत अच्छा लिखा है आपने। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, मासूमियत भरा बचपन होता था, बड़ा सुहाना वो दोस्तों के साथ खेलना, हंसना, मुस्कुराना, आज सभी दोस्तों का बदल गया ठिकाना, मुश्किल हो गया है अब इनसे मिल पाना। तो सौरभ लिखते हैं महाराष्ट्र से, दोस्तों की याद में कोई गीत संभव हो तो प्रस्तुत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो भाई कोशिश करती हूँ। और रही बात दोस्तों से बिछड़ने की, तो दोस्त ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ और काम तो होता नहीं है, पढ़ना होता है और खेलना होता है, तो इसलिए दोस्त भी साथ ही रहते हैं। और जब हम अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर बिछड़ना तो होता ही है। लेकिन हाँ, अब तो कॉल के ज़रिए भी आप उनसे बात कर सकते हैं, और अगर मुमकिन हो तो मिलिएगा ज़रूर, क्योंकि मिलना बहुत ज़रूरी है। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन किंतु परंतु, मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के मैसेजेस लेती हूँ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, और एक छोटा सा ब्रेक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक दोस्तों, कहा था ना एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, तो लौट आए ना हम भी और आप भी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, आज कैसे लेट हो गई मुझे समझ में नहीं आया। वैसे हमेशा इनका जो मैसेज होता है सबसे पहले आता है, तो कोई बात नहीं। ये लिखते हैं सौरभ अनेजा गाजियाबाद से, वो लिखते हैं गुड इवनिंग वेलकम बैक दोस्त। तो थैंक यू सो मच सौरभ, और भी आप सभी के बहुत से मैसेजेस हैं, लेकिन उन मैसेजेस को आज मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली जो नाम लिखकर नहीं भेज रहे हैं। तो चलिए दिल की धड़कनें और भी तेज हो सकती हैं, संभालिए संभालिए संभालिए, क्योंकि ये गीत और गजलों का दौर है दोस्तों। कभी कभी कुछ मखमली आवाजें दिल को इस तरह से छू जाती हैं कि बस जी चाहता है इन आवाजों को इस तरह से ही म्यूजिक में, धुनों में सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें।

जी दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज आया है। बहुत ही सुंदर आपने कहा कि डायरी लिखनी चाहिए। तो भाई, ये तो मैं सही कह रही हूँ। अगर किसी के पास वक्त है और वो इस तरह से शब्दों में अपनी बात को कह सकता है, तो वो डायरी में ज़रूर लिखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब हम अपनी डायरी को लेकर बैठते हैं ना, उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और आगे लिखते हैं, वो लड़की जब घर से निकलती है, वो इनको

गजल बहुत पसंद आई है, ये गीत पसंद आया है उस, और आगे लिखते हैं तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये सॉन्ग उनको बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छुआ, इसलिए थैंक यू सो मच रेनबो एफएम इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं। और ये मेरे पास आया है अरुण कुमार रावत का, और ये मैसेज उन्होंने भेजा है हैदराबाद से। अब देखिए ना कितना छोटा और अच्छा मैसेज है, इसी तरह से अगर आप अपने मैसेजेस भेजेंगे तो बहुत बहुत सही रहेगा। दूसरे का नंबर भी तो आना चाहिए, वरना दूसरे तो नाराज़ ही हो जाएंगे क्योंकि उनका मैसेज तो लिया ही नहीं जाएगा। थैंक यू मैम, हार्ट टचिंग ब्यूटीफुल टॉकिंग, प्लीज़ कन्वे माई विशेस टू माई हार्ट आकाश। ओ माई गॉड, आपका शॉर्ट आउट हुआ ही नहीं ये मामला, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मैसेजेस के ज़रिए बात करते हैं, आप ही करती हैं। तुम्बा मैसेज कर रही हैं और ये कर रही हैं रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से आकाश जी को, तो आकाश जी भाई जाइए इनसे मिलिए, और अगर मिल नहीं सकते हैं तो फ़ोन पर बात तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि भाई ये सच में आपको तहे दिल से चाहती हैं और हमेशा आपके लिए विशेष करती हैं, और साथ में हम लोगों के लिए भी प्रे करती हैं और हमें ब्लेसिंग्स देती हैं कि हमने उनका मैसेज पढ़ा और आप तक पहुंचाया। तो प्लीज़ उनसे बात ज़रूर कीजिए। क्या मजाल जो मुश्किलें मेरे कदम को रोक पाए, वो मंजिल हम एक बार जो सोच लेते हैं हासिल कर ही लेते हैं। तो सौरभ लिखते हैं महाराष्ट्र से, इस पंक्ति को मैंने खुद लिखा है, बस आपके स्वर की ज़रूरत है, तो लीजिए, हमने अपना स्वर दे दिया। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन किंतु परंतु सारे मैसेजेस एक साथ पढ़ लिए जाएंगे तो फिर हम प्रोग्राम को आगे कैसे कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए एक और खूबसूरत सा सॉन्ग सुन लिया जाए, क्योंकि ये सॉन्ग भी ना सच में बहुत बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है।

0: जी दोस्तों, कभी कभी दिल बहुत कुछ कहना चाहता है और हमारे पास शब्द नहीं होते, और जब शब्द होते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता। ठीक उसी तरह से एक जुबला है जो बिल्कुल फिट बैठता है कि जब दांत थे तो चने नहीं थे और चने थे तो दांत नहीं होते। जी हाँ, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं ना, वो यही कहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वेलकम दोस्तों। कोई हालात नहीं समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता, कोई हालात नहीं समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है यारों। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। और ये खूबसूरत गजल आप सबकी नज़र।

शफक कहते हैं किरणों को, रेज और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली

अब अपने दोस्त आरजीआरसी को दीजिए इजाजत। जी हाँ, परसों 6 बजे यानी 16 तारीख को हमारी मुलाकात होगी शाम 6 बजे। तो फिलहाल अपने दोस्त आरजीआरसी को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से ग्रीन बॉडी।

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। ये सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। यात्री लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पर आतंकवाद के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग पर चिंता जताई। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा।

0: आकाशवाणी
1: 12:02 और 57 सेकंड हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे जीरो आवर शो की इस खूबसूरत देशभक्ति गीत के साथ।

दोस्तों महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पूरब और पश्चिम में। और आइए अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और अब आपको सुनवाते हैं शक्ति फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है शोर इन द सिटी और आवाजें हैं श्रेया घोषाल और तोशी रैना की।

और दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ ना कहो फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अलीशा चिनॉय की आवाज में आइए अब आपको सुनवाते हैं मर्डर फिल्म का ये गीत।

दोस्तों 12:30 होने को है और आप इस समय रेनबो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो अर्शो और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो कार्यक्रम का अगला गीत है बचना ए हसीनों फिल्म से, आवाजें के और शिल्पा राव की।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

गैंगस्टर गीत का फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी जेम्स की। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है सुनिधि चौहान ने, फिल्म का नाम है परिणीता।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

ये था एयरलिफ्ट का गीत जिसे गाया था तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह ने। और दोस्तों जीरो आर शो में अब आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा और आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

एक बजे हैं, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वजा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और डेलीगेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग पर चिंता जताई। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा।

0: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। श्रोताओं, 1:02 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम सुहानी रात का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शुद्ध आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुहानी रात। और देखिए स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है 1:17:24। और इसी खामोश सी रात में हमारे एक श्रोता ने हमें प्यारा सा संदेश भेजा है और उन्होंने फरमाइश की है फिल्म पत्थर के फूल से, और ये खूबसूरत गीत की उन्होंने फरमाइश की है। तो लीजिए आपकी फरमाइश हम तक पहुंची है और अब ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए पत्थर के फूल से ये खूबसूरत सा नगमा।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। और देखिए, अब एक और फरमाइश जो है हम तक पहुंची है, ये फरमाइश हमें भेजी है जयंत, जो कि पटना से हमें मैसेज कर रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से गीत। तो आइए, इन्हीं की पसंद पर हम सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

भी भाई हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो देखिए अगला जो मैसेज ये हमें भेजा है, ये मोहम्मद शहनवाज जी हमें मैसेज कर रहे हैं न्यू दिल्ली से। इनके साथ साथ हमें फरमाइश कर रहे हैं तईम अभी और नैश भाई, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम से गीत। तो आइए आप ही की पसंद पर सुनवाते हैं आपको।

तो दोस्तों इस वक्त एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये फरमाइश की है रिंकू जी ने, जो कि बुलंदशहर से हमें मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने भी एक गीत सुनना चाहा है। तो चलिए अब आप ही की पसंद में हम अगला गीत अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। तो ये गीत जो है आपके साथ जो सुनने वाले तमाम श्रोता हैं उनको भी ज़रूर पसंद आएगा।

तो एक और मैसेज जो है हम तक पहुंचा है, ये हर्षदा जी है जो कि जर्मनी से हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए आप ही की फरमाइश पर अगला गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का।

0: आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लोइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और निपे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पर आतंकवाद के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग पर चिंता जताई। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 2:03 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम भुलाई ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

0: मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्वेता, स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हुए हैं और अब वक्त है मुख्य समाचार का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र

को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की। सुबह 4 बजे से ये सेवा शुरू होगी और राज्यमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्रवाई रद्द की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। और दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा, आज सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या की। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है और दोस्तों वक्त है हमारे कार्यक्रम सारेगामा का, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: गोले की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।